हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

क्या नो नश मिला तो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं मैं या तो हाँ भी अपनी रेडियो दोस्त रुचि का हाजिर हो यू कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक ता श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कहने वहाँ सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

91.2 MHz पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

धर्मशाला गणेशोदा तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका गन्ने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

रंजन धर्मशाला कने श्रोताओ, इस वक्त तुहा सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक जी। श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देन कार्यक्रम दा अगला गीत। तुहा सारी इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

जिन धर्मशाला गणेशोदा तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका गन्ने तो सारे इन्हीं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है।
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
1: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
4: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
4: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे।
10: oh, no.
8: मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ देखिए क्या हो गया।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, नगरोटा वगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है।
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।

0: अपना वोट।
1: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
2: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
3: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर

0: हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
1: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति।
2: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
3: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
1: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी बचे।
3: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
6: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे की मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे की मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
7: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
8: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
7: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए। फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। फिर भी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
8: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
7: हाँ, देखिए क्या हो गया।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोतो आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

चुरा लिया। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और श्रोताओ आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं,
2: मानो या ना मानो तुम।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170917018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इसे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान कमाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अचानक।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओ, आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी रेडियो दोस्त सुमन। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यारी सी नमस्ते। जी हाँ श्रोताओ, पहुँच चुके हैं हम रेडियो गुंजन के स्टूडियो में लेकर ढेर सारी जानकारियाँ और प्यारे प्यारे गीत। जानकारियाँ तो श्रोताओ हम आपके साथ साझा करेंगे ही, उससे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: सकता हूँ जुबान बंद मगर रखता हूँ, बोल सकता हूँ जुबान बंद मगर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा क्या, हाँ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ।
1: श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं, आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी रेडियो दोस्त सुमन। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। श्रोताओं कहते हैं, मिटने से नहीं मिटते हैं भाग्य के लेख, कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होते तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ही ना होती। जी हाँ, सुबह सवेरे जब भी हम उठते हैं सबसे पहले ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं, उन्हें याद करते हैं और अपने अपने हिसाब से हर कोई ऊपर वाले को जो है याद करता है। अपने अच्छे कामों के लिए हम याद करते हैं, जो भी जीवन में हम काम करते हैं अपनी खुशियों के लिए याद करते हैं, अपनी तकलीफ़ों के लिए भी हम ऊपर वाले को याद करते हैं। और जीवन में श्रोताओं हम आए हैं तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जब हम अच्छे कर्म करते हैं अच्छा काम करते हैं तो ऊपर वाला उसका फल हमें ज़रूर देता है। और जीवन में कहते हैं, अगर दुख ना हो तो हम ऊपर वाले को तो भूल ही जाएंगे। दुख जीवन में आते हैं तभी तो हम ऊपर वाले को कहीं ना कहीं याद करते हैं ना, और अगर सब कुछ हमें मिल जाए तो ऊपर वाले को हम याद करना भी भूल जाएंगे। तो श्रोताओं, एक वही है जो हमें सब कुछ देता है, अन्न धन अच्छे वस्त्र अच्छा ज्ञान बुद्धि अच्छा स्वास्थ्य, उसके लिए हम ऊपर वाले को याद करते हैं और उठते बैठते हमें इन चीज़ों के लिए परमात्मा का, माता रानी का, अपने अपने इष्ट देव का हम सभी धन्यवाद कर सकते हैं जिसने इतना अच्छा जीवन हमें दिया है। और हम तो धन्यवाद करते हैं श्रोताओं इसलिए कि हमें अच्छे दोस्त जो मिले हैं और हम उनकी तंदुरुस्ती के लिए हर दिन दुआ मांगते हैं कि हमारे दोस्तों का जीवन खुशियों से भर जाए, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और वो हमसे जब भी मिले हंसते मुस्कुराते हुए मिले, इसी हंसी को और बरकरार रखते हैं। और कार्यक्रम का अगला गीत आप

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूँ उस प्यारे से कार्यक्रम को। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियाँ और आपके साथ साझा करते हैं। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने गुरुवार को लाहौल स्पीति एवं मनाली प्रवास के दौरान विश्व प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग का दौरा कर इसकी तकनीकी विशेषताओं, सामरिक महत्व तथा क्षेत्र विकास में इसकी भूमिका की सराहना की है। इसके दौरान उन्होंने कहा है कि अटल टनल सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित आधुनिक इंजीनियरिंग और आधुनिक तकनीक का अद्भुत उदाहरण है। इससे हिमाचली क्षेत्र में विकास और संपर्क के नए आयाम स्थापित होंगे। राज्यपाल ने साउथ पोर्टल के नॉर्थ पोर्टल तक टनल का अवलोकन किया है तथा BRO अधिकारियों से इसके निर्माण, सुरक्षा प्रबंधन और संचालन संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। अधिकारियों ने उन्हें वर्ष भर यातायात सुचारू रूप रखने के लिए अपनाई जा रही व्यवस्थाओं की भी जानकारी दी है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो कुंजन।

0: श्रोतो, इसी गीत के साथ है कार्यक्रम में समय हो गया है 9:20 और आइए चलते हैं प्रादेशिक समाचारों की ओर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने का आज दूसरा दिन। नामांकन के पहले दिन कुल 16,891 नामांकन पत्र भरे गए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। शहरी निकाय व पंचायती राज चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का करेंगे मार्गदर्शन। किन्नौर जिला में हिमालय क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता को उजागर करने के उद्देश्य से आज से 3 दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। और 11 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होगा IPL का अहम मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने का आज दूसरा दिन है। इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन कल 16,891 नामांकन पत्र भरे गए और 11 मई को भी नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
2: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मंडी जिला में सबसे अधिक 3,731 जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम 74 नामांकन पत्र भरे गए। इसके अलावा चंबा में 2067, ऊना में 1,892, हमीरपुर में 1,572, बिलासपुर में 1,459, सोलन में 1,415, कांगड़ा में 1,407, कुल्लू में 1,383, सिरमौर में 917, शिमला में 784 जबकि किन्नौर में 190 नामांकन पत्र दर्ज किए गए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश की कुल 31,182 पदों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रियंका ठाकुर।
1: भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज से प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। उनका ये दौरा प्रदेश में चल रहे नगर निगम व पंचायती राज चुनाव के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रवास के दौरान वे मंडी जिला में विभिन्न संगठनात्मक व चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार सौदान सिंह आज शाम मंडी पहुंचेंगे। कल उनका मंडी जिला में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों, संगठनात्मक बैठकों व चुनावी गतिविधियों में भाग लेने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे नगर निगम व पंचायती राज चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। किन्नौर जिला में क्षेत्र की समृद्ध प्राकृतिक विरासत के संरक्षण व उत्सव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज से 10 मई तक कल्पाकंडे के गोली में किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ये उत्सव कल आयोजित होने वाले ग्लोबल बिग डे व हिमालयन बर्ड काउंट के साथ समन्वित रहेगा। उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस फेस्टिवल का उद्देश्य किन्नौर व हिमालय क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता को उजागर करना और स्थानीय समुदाय और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन संरक्षण व सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित होगा और टूरिज्म को बढ़ावा देगा जिससे पर्यावरण, स्थानीय संस्कृति और पारिस्थितिकी का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। आज विश्व रेडक्रॉस दिवस है। ये दिवस मानवता, सेवा और सहायता की भावना को समर्पित है। विश्व रेडक्रॉस पर हर साल 8 मई को हेनरी ड्यूटेंट की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वर्ष 2026 के इस वर्ष की थीम है ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के पक्ष में खड़ा होना है। ये थीम मानवता को जीवित रखने और अग्रिम पंक्ति के नायकों को सम्मान देने पर केंद्रित है। ये दिन युद्ध, आपदा और महामारी के दौरान राहत कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को समर्पित है। इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुनिया भर में संघर्ष, प्राकृतिक आपदा और स्वास्थ्य संकटों के दौरान जरूरतमंदों को मानवीय सहायता प्रदान करने वाले स्वयंसेवकों के प्रयासों को ये थीम सलाम करता है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। इस मैराथन के आयोजन से आकाशवाणी न केवल अपनी गौरवशाली संस्कृति और अस्मिता का उत्सव मना रही है बल्कि स्वास्थ्य स्फूर्ति एकजुटता और लोक संपर्क का संदेश भी प्रसारित कर रही है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने और वास्तुकार व शिल्पकारों को लाभ देने के उद्देश्य से पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के लागू हो जाने से जहां विभिन्न व्यवसायों में लगे कारीगरों का विकास हो रहा है, वहीं उन्हें 1,00,000 रुपए तक का ऋण सस्ती ब्याज दर पर 5% पर मुहैया करवाया जा रहा है। आकांक्षी जिला चंबा भी अपनी समृद्ध कला व संस्कृति के लिए जाना जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना यहां के शिल्पकारों के लिए भी लाभकारी साबित हो रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
3: का प्रसिद्ध चंबा रुमाल हो, यहाँ की चप्पल हो या यहाँ की प्राचीन धातु कला हो, इससे कई शिल्पकार वर्षों से जुड़े हैं तथा आज देश विदेश में अपनी छटा बिखेर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसे शिल्पकारों के उत्थान के लिए ही पीएम विश्वकर्मा योजना संचालित की गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुरू होने से इस कला से जुड़े शिल्पकार काफी उत्साहित है। जिला के कई शिल्पकार इस योजना से जुड़कर इसका लाभ भी ले रहे हैं। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला के लिए मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन उड़ानें संचालित करेगी। कंपनी ने एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है। ये सेवाएं 2 नवंबर 2025 से बंद थी, अब दोबारा सेवाएं शुरू होने से पर्यटन कारोबार और यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में 11 मई को पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स के बीच IPL मैच खेला जाएगा। कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में पंजाब किंग्स 11 की टीम कल शाम धर्मशाला पहुंची। धर्मशाला में खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कोच रिकी पॉन्टिंग की देखरेख में टीम आज से अभ्यास करेगी। पंजाब किंग्स के लिए धर्मशाला के मुकाबले बेहद अहम माने जा रहे हैं। टीम को पिछले 3 मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में प्लेऑफ की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए धर्मशाला में जीत दर्ज करना जरूरी होगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की टीम कल धर्मशाला पहुंचेगी। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, पूर्व CPS के सरकारी आवास खाली न करने पर हाईकोर्ट सख्त। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाईकोर्ट सख्त, पूर्व CPS के सरकारी आवासों पर कब्जे को लेकर प्रदेश सरकार से मांगा रिकॉर्ड। पंजाब केसरी की खबर है, नई दिल्ली शिमला के बीच 10 मई से बहाल होगी हवाई सेवा, शिमला धर्मशाला के बीच भी होगी उड़ान। हिमाचल में हाईटेक होगी सेब की खरीद फरोख्त, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, CM ने HPMC को फल खरीद की तैयारी के दिए निर्देश। दैनिक जागरण की एक खबर है, शास्त्रीय अध्यापकों की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने का आज दूसरा दिन। नामांकन के पहले दिन कुल 16,891 नामांकन पत्र भरे गए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। शहरी निकाय व पंचायती राज चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का करेंगे मार्गदर्शन। किन्नौर जिला में हिमालय क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता को उजागर करने के उद्देश्य से आज से 3 दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और 11 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होगा IPL का अहम मुकाबला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

इसी गूंज के साथ श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के वेदर की। श्रोताओं, आज का वेदर है 24 डिग्री सेल्सियस और मौसम में ह्यूमिडिटी बनी हुई है 52% और अच्छे खासे बादल श्रोताओं आज मौसम पर छाए हुए हैं। और मौसम का बदलाव तो खैर हम सभी एक दो महीने से देख ही रहे हैं कि बहुत सारा बदलाव मौसम में आया है। जिन दिनों में गर्मियां हुआ करती थी, बहुत तेज़ धूप हुआ करती थी, उन दिनों में स्वेटर भी मौसम में पहना दिए हैं। तो मौसम का बदलाव बहुत आजकल चल रहा है, तो थोड़ा सा मौसम में अपना ध्यान रखें क्योंकि बदलता मौसम बीमार करता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल एकदम तेज़ धूप हो रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और जिस दिन मौसम ख़राब हो रहा है उस दिन मन कर रहा है स्वेटर डालने के लिए। तो थोड़ा सा आप अपना परहेज़ रखें, ठंडी चीज़ों को खाने से बचें, एकदम से फ्रिज का पानी निकाल कर या फ्रिज का कुछ भी ठंडा कोल्ड ड्रिंक जूस इस तरह की चीज़ें आइसक्रीम अभी ना खाएं, थोड़ा इन चीज़ों को अवॉइड करें। क्योंकि जब हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं बदलते मौसम में तो जाहिर सी बात है कि हमारा गला भी ख़राब हो जाता है और कई बार हम बीमार भी पड़ जाते हैं। तो बदलते मौसम में हम सभी को अपना ख्याल रखना है। जब हम अपना ख्याल रखते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। तो श्रोताओं, इस बदलते मौसम में सभी अपना ध्यान रखें और फिलहाल इस समय हमें तो आप सभी का ध्यान रखना है और सुनवाना है आप सभी को कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है, क्योंकि हर कोई भी समय के साथ ही रेडियो सेट ऑन नहीं करता है, अपने अपने टाइम के हिसाब से हर कोई रेडियो सेट ऑन करता है और हमें सुनता है। जब सुनते हैं तो कई बार सोचते हैं आज कौन होगा हमारे साथ, माफ़ कीजिएगा श्रोताओ, और साथ ही जब हम अपनी पहचान बताते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे दोस्त आज रेडियो सेट पर आ गए हैं। तो श्रोताओ, हम तो आपसे मिलने आ गए हैं, मगर श्रोताओ आपसे भी हमें मिलना है और थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इतिहास की। श्रोताओ, आज है 8 मई। 8 मई का दिन भारत और विश्व में बहुत ही खास होता है। इस दिन को सबसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पहचान रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है और कहीं ना कहीं श्रोताओं, आज हमें भी अपनी सेहत में मौसम का असर दिख रहा है। तो अभी हमने मौसम की बात की है और मौसम का असर जो है सेहत पर नज़र आ रहा है। हल्की फुल्की खांसी, जुकाम और बुखार के भी आसार हम सभी में देखने को मिलते हैं। और खैर, अपना ध्यान रखें, जब भी आप कहीं बाहर जाएँ तो अपना स्वेटर और अपने फुल स्लीव के कपड़े ज़रूर पहन कर जाएं, क्योंकि अभी ऐसा मौसम नहीं है कि विदाउट स्लीव के या पूरी गर्मियों वाले कपड़े पहने जाएं। तो थोड़ा सा इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और देखिए श्रोताओं, जब हमारी बातें शुरू होती हैं तो कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है, यूँ कहें मायने कि एक छींक से कितनी ही बातें इधर की उधर होगी। लेकिन मौसम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के साथ साथ जानकारियां भी बेहद ज़रूरी है। तो फिर से हम 8 मई की बातचीत करते हैं। 8 मई की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की श्रोताओं बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में जनरल अल्फ्रेड योडल के बिना शर्त आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए थे, जिससे यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। महात्मा गांधी का उपवास 1933 में मोहनदास करमचंद गांधी ने आत्मशुद्धि और के साथ आंदोलन के समर्थन में 21 दिनों का उपवास रखा था। इसके साथ साथ श्रोताओं, दुनिया के प्रसिद्ध कोल्ड ड्रिंक कोका कोला का उत्पादन पहली बार अमेरिका के अटलांटा में डॉक्टर जॉन पेम्पटन द्वारा शुरू किया गया था। और रेड क्रॉस की बात करें तो रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी डुनेट का जन्म आज ही के दिन हुआ था। इसके साथ साथ श्रोताओं, थोड़ा सा और कार्यक्रम में आगे बढ़े तो श्रीलंका स्पिनर मैथुला मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ अभी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुँचाते हैं।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम बात आज के दिन की कर रहे थे, यानी 8 मई की। तो श्रोताओ, 8 मई को बहुत सारे महान व्यक्तियों के जन्म भी हुए थे। उनकी बात करें तो भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और ब्रिटिश भारत इतिहास के विशेषज्ञ तपन राय चौधरी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। इसके साथ साथ गिरजा देवी की श्रोता बात करें तो भारत के प्रसिद्ध ठुमरी गायिका, जिन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है, उनका जन्म भी 1929 को आज ही के दिन हुआ था। स्वामी चिन्मयानंद 1916 में भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतन और वेदांत दर्शन के प्रचारक का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। ज्ञान प्रकाश घोष 1909 में प्रसिद्ध भारतीय हारमोनियम और तबला वादक रहे हैं, उनका जन्म भी आज ही के दिन 1909 में हुआ था। और जहां कुछ व्यक्तियों के जन्म आज के दिन हुए थे, वहीं कुछ महान व्यक्तियों के निधन भी आज ही के दिन हुए थे। बाल मुकुंद जी की बात करें तो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे, उनका निधन आज ही के दिन 1915 में हुआ था। उनके साथ साथ अमीर चंद्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक और वीर सिपाही की मृत्यु 1915 में आज ही के दिन हुई थी। तो श्रोताओ, ये तो थी आज की जानकारी। यानी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ तो आप जुड़े रहिए।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो कार्यक्रम में श्रोता, फिर से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ये दिन रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय स्मृति के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसे स्थापना और इतिहास की बात करें श्रोताओं, तो हेनरी ड्यूनेट ने इटली में हुए सेल्फोनिक की जंग के दौरान घायल सैनिकों की पीड़ा देखकर एक तटस्थ संस्था बनाने का विचार किया था। उनके परिणाम स्वरूप 1863 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। और हाँ श्रोता, इसके उद्देश्य की बात करें तो इस दिन का मुख्य उद्देश्य मानवीय पीड़ा को कम करना, जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना, आपदा तथा युद्ध के समय बिना किसी भेदभाव के ज़रूरतमंदों की मदद करना है। और

0: थीम की बात करें यानी 2026 की, तो इस वर्ष 2026 की थीम है मानवता को जीवित रखना, जो कठिन समय में भी मानवीय शक्ति और सेवा के महत्व पर जोर देती है। तो श्रोता, ये तो थी कार्यक्रम में हमारी जानकारियाँ अभी और भी आपके साथ हम साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। आप जुड़े रहिए, बने रहिए रेडियो
1: धर्मशाला के।

चौदह इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में हम बात

कर रहे थे विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल, जैसे हमने पहले भी बात की, आज ही के दिन मनाया जाता है। और रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो आपदा, युद्ध, महामारी या किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति में पीड़ितों की मदद करता है। हर दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य रेड क्रॉस संस्था और इसके कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मान देना भी है। और साथ ही साथ श्रोताओं, जो है मानवता को जीवित रखना एक ऐसा संदेश है जो आज के चुनौतीपूर्ण समय में अत्यंत प्रासंगिक है। ये संघर्ष, स्वास्थ्य संकट और सामाजिक असमानताएं लगातार बढ़ रही हैं। ये विषय हमें मानवीय मूल्यों की रक्षा करने की आवश्यकता का स्मरण भी करवाता है। और रेड क्रॉस कार्यकर्ताओं को जो है याद करने का दिन होता है। साथ ही साथ ये लोग दया और ऐशा फैलाने के लिए निरंतर प्रयासरत भी रहते हैं। ये श्रोताओं एक थीम नहीं है बल्कि एक आह्वान है कि हम सब मिलकर सेवा, सहानुभूति और सहयोग की भावना से मानवता को जीवित रखें। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में रुकते हैं, लेते हैं एक अंतराल, और अंतराल के ठीक बाद हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आर कार्यक्रम में विश्व रेड क्रॉस दिवस की हम बात कर रहे थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाने की शुरुआत 1948 में की गई थी ताकि रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेट की स्मृति में हर वर्ष उनके जन्मदिन यानी 8 मई को इस दिन को समर्पित किया जा सके। हेनरी डुनेट, जिन्होंने इटली के सोफ फेरिंग युद्ध की विभीषता को देखकर ये अनुभव किया है कि घायल सैनिकों को तटस्थ मानवीय सहायता की आवश्यकता है, उन्होंने स्वैच्छिक राहत संगठनों की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप 1863 में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। आगे चलकर जिनेवा कन्वेंशन को भी अपनाया था। उनकी प्रेरणा से 152 देशों में राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस रेड क्रॉस समिति कार्यरत है, जिन्होंने ये आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय नेटवर्क बन गया। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारी में थोड़ी सी बात और याद आ गई कि हेनरी डुनेटा के बारे में आप सुन रहे हैं कि वो तो कई बार मन में विचार आता है कि वो कौन थे। तो श्रोताओं, वो नोबेल पुरस्कार

संस्था के संस्थापक के रूप में हुई थी और उनका पूरा नाम जिया हेनरी ड्योना था। तो श्रोताओं, ये थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोता, परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसका आनंद लेना है। और आनंद तभी लिया जा सकता है जब हम ज़िंदगी को बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे तरीके से जिएं। तो जीने के लिए खाना पीना, अच्छा स्वास्थ्य, उसके साथ साथ कामकाज भी बेहद ज़रूरी है। कामकाज के साथ साथ थोड़ी सी जानकारियाँ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें जानकारी होगी तभी तो हम जागरूक बनेंगे ना। तो एक जागरूक नागरिक होना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो भारत में रेड क्रॉस की आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई थी। ये संस्था देश में रक्तदान अभियान, आपदा राहत कार्य, हेल्थ केयर और सामाजिक सेवा जैसे अनेक कार्य करती है। और राष्ट्रपति इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। और रेड क्रॉस संस्थाएं विभिन्न सामाजिक सेवा कार्यक्रम, निशुल्क मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर, रैली और समाचार सेमिनारों का आयोजन भी करती है। स्कूली छात्र, युवा और स्वयंसेवकों को मानवीय सेवा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इसके साथ साथ

मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जाती है और रेड क्रॉस कार्यकर्ता को उनके साहस और सेवा के लिए सम्मानित भी किया जाता है। श्रोता, विश्व रेड क्रॉस दिवस न केवल एक दिन है बल्कि ये सेवा, साहस, करुणा और मानवता का प्रतीक है। हेनरी ड्यूना द्वारा शुरू की गई ये आंदोलन आज लाखों लोगों को संकट की घड़ी में सहायता प्रदान करता है। इस दिन हम सभी को ये प्रेरणा लेनी है कि जरूरतमंदों की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। जी हाँ श्रोताओं, सहायता एक बहुत ही अच्छा काम होता है। हम जीवन में आए हैं तो हमें अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे कामों में सहायता ज़रूर सभी की करें। जहाँ आपसे हो सकता है वहाँ ज़रूर सहायता करें, और सहायता करना अच्छी बात है, एक दूसरे के काम आना चाहिए। ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है, अगर हम किसी के काम आ सकते हैं तो इससे अच्छी और बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो श्रोता, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा देते हैं विराम और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो आइए कार्यक्रम में कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं। अधीक्षक डाकघर धर्मशाला रविंदर कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मशाला डाक मंडल में गत वित्तीय वर्ष के दौरान डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा की कुल 8,557 नई पॉलिसियां खरीदी गई हैं। इन पॉलिसियों में कुल बीमा राशि 318 करोड़ रुपए तक, प्रीमियम राशि 4.74 करोड़ रुपए रही है। उन्होंने बताया है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है प्रस्ताव अधिक प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ प्रीमियम राशि में 1.33 करोड़ रुपए तक, बीमा राशि में 88 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। तो श्रोतो, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों को फिर से देते हैं विराम और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और कार्यक्रम में श्रोताओ, हम बात करते हैं, और पहले हमने विश्व कैंसर दिवस पर बात की है, अब हम बात करेंगे वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे के बारे में। हर साल 8 मई को दुनिया भर में से मनाया जाता है, और इस दिन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को डिंब ग्रंथि ओवेरियन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके लक्षणों की पहचान करना और शीघ्र निदान के महत्व को समझाना है। विश्व डिंब ग्रंथि कैंसर दिवस की मुख्य बातें आपके साथ साझा करें श्रोताओं, तो इसका उद्देश्य ओवेरियन कैंसर के लक्षणों के बारे में शिक्षित करना है, क्योंकि ये अक्सर देर से हमें पता चलता है। इसके इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत 2013 में विभिन्न देशों के रोगी अधिकार समूह द्वारा की गई थी। साइलेंट किलर की बात करें तो ओवेरियन कैंसर को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती लक्षणों में इसके लक्षण जो है स्पष्ट नहीं होते हैं। ओवेरियन कैंसर के मुख्य लक्षणों की बात करें तो लगातार पेट फूलना या सूजन है, पेट या पेल्विक क्षेत्र में दर्द है, जल्द पेट भर जाना या खाने में परेशानी होना है, बार बार यूरिन आने की समस्या है। इसके साथ साथ बहुत सारे इससे जोखिम होते हैं, बढ़ती उम्र के साथ खतरा जो है बढ़ता है। पारिवारिक इतिहास की बात करें तो जेनेटिक म्यूटेशन जैसे भी तकलीफ होती है, और इसके साथ और भी कई कारण हैं। ये उन महिलाओं को याद दिलाता है जो इस बीमारी से लड़ रही हैं, उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के प्रयास पर ध्यान केंद्रित करती है, और जागरूकता से ही समय पर इलाज संभव है, जिससे जीवन भी बचाया जा सकता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम अभी और जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा लेते हैं कार्यक्रम में विराम और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम के लिए।

श्रोता, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोता, आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर हाजिर है आपकी दोस्त सुमन। तब हम बात कर रहे थे ऑब्री कैंसर डे के बारे में। ऑब्रियन कैंसर को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण इतने सामान्य और हल्के होते हैं कि महिलाएं आम पेट की परेशानी समझकर नज़रअंदाज कर देती है। यही वजह है कि कई मामलों में इस बीमारी का पता नहीं चलता है। जब कैंसर काफ़ी बढ़ चुका होता है तो डॉक्टरों का कहना है कि जागरूकता और समय पर जांच ही इस बीमारी से बचाव का मुख्य कारण होता है। तो छोटी छोटी बातों को शोधो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। खासकर हमारी महिला बहनें जो हैं अपनी सेहत को लेकर बहुत ही लापरवाह होती हैं। सोचती हैं आज नहीं कल डॉक्टर के पास जाएंगी, कल नहीं परसों जाएंगी। ऐसे ऐसे करते दिन महीने और कई साल बीत जाते हैं और उनका दुख जो है बढ़ जाता है। और हम में से बहुत सारी ऐसी महिलाएं और हमारी जो बेटियां हैं वो हैं शर्म की वजह से अपना दुख डॉक्टर तक भी नहीं बता पाती है। कारण ये होता है कि दुख बढ़ जाता है और कई बार तो इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। लास्ट स्टेज आ जाती है और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दर्द के साथ तकलीफ और दुख हमारा बढ़ जाता है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हमारी महिलाओं को समय पर जांच करवानी चाहिए। इसके कारणों की बात करें तो इसके मुख्य लक्षण पेट फूलना, पेट में भारीपन, दर्द, थोड़ी मात्रा में खाना खाने के बाद पेट फूलना, कम भूख लगना, कब्ज, बार बार पेशाब आना, पेल्विक एरिया में दर्द होना जैसे संकेत अक्सर महिलाओं को महसूस होते हैं। ये लक्षण गैस, एसिडिटी, अपच इत्यादि के भी होते हैं। लेकिन जो ओवेरियन कैंसर की बात करें तो इसके भी लक्षण सेम होते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, उनसे सलाह ले और समय रहते अपना इलाज शुरू कर दे। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ फिर से कार्यक्रम में रुकते हैं, लेते एक अंतराल। अंतराल के ठीक बाद आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशा।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोताओं, आज के पिटारी में ढेर सारी जानकारियां हैं, तो अगली जानकारी की ओर हम बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के बारे में। हर साल इसे भी 8 मई को मनाया जाता है और थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने, रोगियों के सहयोग देने और उनके संघर्ष को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ये एक अनुवांशिक रक्त विकार है जो बच्चों में माता पिता से आता है। इसका उद्देश्य लोगों को जांच और रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के मुख्य बातों की बात करें तो इसका उद्देश्य इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, निदान की सुविधा और मरीजों के लिए बेहतर उपचार सुनिश्चित करता है। 2026 की बात करें तो थैलेसीमिया क्या है? ये एक अनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें शरीर पर्याप्त और स्वस्थ हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, जिसमें गंभीर एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। भारत की बात करें तो भारत को अक्सर थैलेसीमिया की राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 35 और 50 मिलियन लोग इसके वाहक हैं। मरीजों को नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है और इसके साथ साथ लगातार कमजोरी, थकान, त्वचा का पीला पड़ना, चेहरे की हड्डियों का बढ़ना और विकास धीमा पड़ जाता है। शादी से पहले और गर्भावस्था के दौरान थैलेसीमिया की जांच इस रोग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। तो श्रोताओं, इस दिवस पर लोगों से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की जांच बचाने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की जाती है। तो ये तो थी हमारी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और हमारी बात हो रही है थैलेसीमिया डे के बारे में। श्रोताओ, लाखों परिवारों की कहानी है जो इस गंभीर अनुवांशिक बीमारी से जूझ रहे हैं और साथ ही साथ उन लोगों का ध्यान हम केंद्रित करते हैं कि थैलेसीमिया के जो वाहक हैं उन्हें थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। थैलेसीमिया, जैसे श्रोताओ हमने पहले भी बात की, एक अनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर में खून की कमी, कमजोरी, थकान, कई गंभीर समस्याएँ पैदा होती हैं। ये बीमारी माता पिता से बच्चों में पहुँचती है। यदि दोनों माता पिता इस बीमारी के वाहक है तो बच्चों में थैलेसीमिया होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो श्रोताओ, अपनी जानकारियों को हम देते हैं विराम और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

चौदह हिस्सा में पहुंच चुके हैं हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। तो अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। अगली बार नई बातों, नई जानकारियों के साथ आपसे

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए, कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है।
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवा तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रूपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रूपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं।
9: फिर
8: क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हो गया, क्या हो गया?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या

0: है?
1: चुन्नी के लिए?
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले ही महीने 12 साल की हो जाएगी।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे की मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
1: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
2: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
1: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं।
2: फिर
1: क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
2: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
1: हाँ देखो क्या हो गया।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 तो ओमेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, और मेरे साथ हैं
1: रूमा
0: जी। तो हम हाजिर हो गए हैं दोस्तों आप सभी के लिए, आप सभी का बहुत ही खास कार्यक्रम लेकर, जिसका कि आप सभी को हर हफ्ते इंतजार रहता है बेसब्री से, क्योंकि बहुत ही खास कार्यक्रम है और खासकर आप सभी का अपना कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम का नाम बता दें।
1: बिल्कुल रुचिका, जब तक कार्यक्रम का नाम नहीं बताएंगे आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे हम
0: जी।
1: तो दोस्तों कार्यक्रम है मेरे हौसलों की उड़ान, और हमारे हौसलों में उड़ान आती है आप सबके आने से। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज हम इस कार्यक्रम की। और आज भी रुचिका हम एक बहुत ही दिलचस्प सा मुद्दा लेकर दोस्तों के साथ आए हैं
0: जी।
1: और आपको तो पता है वैसे भी ये कार्यक्रम वेस्ट है, विशेषता महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पे के लिए। तो आज भी हम बच्चों के संबंधित कुछ अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगे अपने दोस्तों को
0: जी। बिल्कुल दोस्तों, वैसे तो हमारी हर कार्यक्रम में यही उम्मीद रहती है कि आप जरूर हमारी बातों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, कोई ना कोई जानकारी जो है आप सभी तक जरूर पहुंचती है, क्योंकि हम आप सभी के लिए ही बहुत सारी ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जिससे कि आप अपनी जिंदगी में जो आपके अपने अधिकार हैं उनसे रूबरू हो सकें, अपने लिए स्टैंड ले सकें, अपने लिए आवाज उठा सकें। क्योंकि जब तक हमें चीज़ों का पता नहीं होगा, जो जो अधिकार हमारे लिए हैं उनका नॉलेज हमें नहीं होगा, तो हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। या तो कई बार क्या होता है रूमा जी कि हम डर सहम कर जो है चुप रह जाते हैं, पर जब हमें पता है कि हमारा पूरा राइट है और हमें कोई रोक नहीं सकता है इस चीज़ के लिए, या तो हमारे साथ जो भी अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो लोग हमारा साथ देंगे। कोई दे ना दे पर हम ही बहुत हैं इस चीज़ के लिए।
1: बिल्कुल, हमें खुद ही अपने लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं
0: जी।
1: और वैसे भी रुचिका जी हमेशा बात आती है ना कि कई बार हम सोचते हैं महिलाओं के अधिकार हैं, पुरुषों के अधिकार हैं
0: जी,
1: लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो हमारे मन में आता है बच्चों के लिए क्या अधिकार होंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि बच्चे तो एक अलग से
1: और माता पिता के संरक्षण में पल रहे हैं, माता पिता उनको सब कुछ दे रहे हैं, तो क्या बच्चों के लिए भी क्या कोई विशेष कानून है
0: जी। तो रूमा जी होने भी चाहिए, क्योंकि अगर आज के समय की बात करें दोस्तों, तो पहले भी ये बात मैंने आप सभी से कही थी कि आज के समय में बच्चे अपने घर पे ही सेफ नहीं है, तो फिर वहाँ पर उन अधिकारों की जरूरत पड़ जाती है।
1: बिल्कुल, और अधिकार तो सबके लिए हैं, बराबर हैं
0: जी।
1: और हमारी संसद ने भी एक विशेष अधिकार बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। बेशक हमारे बच्चे घरों में सुरक्षित हैं, हम उनकी देखभाल के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी जीवन भर की कमाई हम अपने बच्चों की खुशियों के लिए निचावर करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे सामने इस तरह की दिक्कतें आती हैं, बच्चे किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं। और ज़्यादातर आप देखिए आजकल का जो समय है रुचिका, वो बहुत चेंज हो गया है, बच्चे हमारे अपराध की ओर भी जा रहे हैं
0: जी।
1: और इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कई जगह गरीबी इसका कारण है, कई जगह ओवर प्रोटेक्शन जो है, हम बच्चों को हद से ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करते हैं
0: जी,
1: ये भी अपराधों का कारण हो सकता है। कई बार हमारे आस पड़ोस में, अपने घर में हमारा खुद का रवैया बच्चों के सामने हिंसात्मक हो जाता है, माता पिता गाली गलौज कर रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, हमेशा कलह कलेश पड़ा रहता है, तो ये सब चीजें देख के भी बच्चों के अंदर अपराध की प्रवृत्ति आती है, उनके अंदर जो गुस्सा इकट्ठा होता जाता है, क्योंकि बच्चे जो है मुझे लगता है कि कई मामलों में बच्चे जो हैं वो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं
0: जी।
1: घर में माता पिता अगर लड़ाई कर रहे हैं, आस पड़ोस में कुछ ऐसा गलत हो रहा है, हम बच्चों के सामने नशा कर रहे हैं, इन सब चीजों का बच्चों के ऊपर कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है
0: जी। बिल्कुल,
1: और जब बच्चे अपनी बात कहीं नहीं कर पाते हैं तो उस फ्रस्ट्रेशन को लेकर वो बाहर जाते हैं, गलत काम करते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलके, या तो नशे की गिरफ्त में आ जाएंगे, या फिर वो मारपीट या और तरह की, आपने तो सुना होगा आजकल बच्चे भी हिंसा और बलात्कार मर्डर जैसे केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं
0: जी।
1: तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वाल मन पे हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, उन चीजों का भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में सरकार का एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है कि बच्चों को जो भी कानून बच्चों की फेवर में बनाए गए हैं, बच्चों के हित में बनाए गए हैं, उनका मकसद एक ही है, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। अगर कोई बच्चा अपराध भी करता है तो बच्चा दोबारा से उस अपराध में संलिप्त ना हो पाए और उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, क्योंकि जब कोई बच्चा किसी अपराध में संलिप्त हो जाता है तो फिर उसका, आपने देखा है ना, अपराधी एक के बाद दूसरे अपराध करता है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो ऐसे में उसको दोबारा वो अपनी उस बात को रिपीट ना करे, उसके मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने कुछ इस तरह के एफर्ट्स किए हैं, कुछ प्रयास किए हैं जो हमारे बच्चों को अपराध की दुनिया में ले जाने से रोकते हैं। और इसी कड़ी में सरकार ने 2000 में एक एक्ट पारित किया था, किशोर न्याय अधिनियम, जिसका मेन फोकस जो था बच्चों के समुचित विकास पे था, बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना था, बच्चों का पुनर्वास करना था, उन बच्चों का जो अपराध में कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट कर कहीं ना कहीं खो गए हैं, गुम हो गए हैं, उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना मुख्य लक्ष्य था इसका।
0: जी बहुत ही सही बात रुमा जी आपने कही है, कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं अपराध की ओर बढ़ते जा रहे हैं और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं घर से ही होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, और ये आप सभी जानते हैं क्योंकि पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि जब भी कोई अगर आपस में भी लड़ाई कर रहे हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि बच्चे उनके सामने हैं, वो ये समझते हैं, या तो कई बार हम क्या करते हैं बच्चों को उसी वे में समझाते हैं कि नहीं आपको इनके साथ बात नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, मतलब पूरी कहानी जो है वो सुना रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस बात का प्रभाव जो है उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और बच्चे उन चीजों को सीखते हैं, क्योंकि बच्चा अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। तो जो आप बच्चों के सामने जो भी बातें रखेंगे या जो भी बिहेवियर उनके सामने आप प्रस्तुत करेंगे तो वो ऑब्वियसली उसका अनुकरण करेंगे, क्योंकि बच्चे अनुकरण करते हैं, हर बात का अनुकरण करते हैं। तो रूमा जी मुझे लगता है बातें हमने ऐसे ही शुरुआत कर दी है, पर थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं मुझे लगता है।
1: एक थोड़ा सा अगर और ये ब्रेक थोड़ा संगीतमय हो तो और अच्छा लगेगा।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि आते ही हम बस शुरुआत कर देते हैं और बेचारे अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचते हैं।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सोचते हम उनके बारे में है, पर क्या है ना हमारी बातें ऐसी होती है कि हमें लगता है कि आज ही हम सब कुछ अपने दोस्तों को बता दें ताकि अगर कोई उनके आसपास इस तरह की परेशानी में हो तो वो समस्या का हल उसको मिल जाए। तो मैं आगे यही कहूंगी, बातों को विराम दूंगी और हम एक गाना सुन लेते हैं।
0: जी बिल्कुल, तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं प्यारे से गीत के साथ और बढ़ते हैं कार्यक्रम में इसी के साथ।

0: तो दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान में। और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और रूमा गुलेरिया जी के साथ। तो दोस्तों, बहुत सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचानी होती हैं, तो कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं किशोर न्याय अधिनियम के बारे में।
1: जी,
0: तो रूमा जी, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और क्योंकि बहुत सारी बातें करनी होती हैं और फिर समय का पता नहीं चलता है। और वैसे भी दोस्तों, आप सभी जानते हैं समय जो है वो रेत की तरह होता है, जो कि हाथ से ऐसे फिसलता जाता है और कब फिसल जाता है वो पता ही नहीं चलता।
1: बिल्कुल, और तो हमने इस रेत को फिसलने नहीं देना है।
0: जी,
1: कोशिश करेंगे अधिक से अधिक जानकारी हम अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।
0: जी, तो सबसे पहले तो बात करते हैं रूमा जी, किशोर न्याय अधिनियम है क्या और इसके अंतर्गत बच्चा जो है वो कौन है, मतलब इसके अंतर्गत हम किसको बच्चा मानेंगे?
1: बिल्कुल रुचिका जी, किशोर न्याय अधिनियम जो है वो अपने आप में एक बहुत ही व्यापक विषय है।
0: जी,
1: इसके अंतर्गत मैंने पहले भी आपसे कहा, बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर सामने रखकर इस अधिनियम को बनाया गया था।
0: जी,
1: जिसमें उन बच्चों को भी शामिल किया गया था जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं है, बेसहारा बच्चे, गुमशुदा
0: जी,
1: जो कहीं खो जाते हैं, घर से भागे हुए बच्चे, ऐसे बच्चे जो अवंडेंड हैं, जिनको छोड़ दिया गया है, बच्चे जिनके माता पिता हैं लेकिन सक्षम नहीं हैं वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकें, उनकी परवरिश कर सकें। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके माएँ हैं लेकिन पिता का स्वर्गवास हो चुका है लेकिन उन बच्चों की देखभाल वाला कोई नहीं है, भीख मांगने वाले बच्चे, इसी के साथ साथ नशे की जद में आए हुए बच्चे, जो नशों का शिकार हो गए बच्चे हैं, वो हैं। ये वो बच्चे हैं जो चाइल्ड इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन के अंतर आते हैं। इन बच्चों को विशेष देखभाल की ज़रूरत है, इसमें अपाहिज बच्चे भी हैं। दूसरा, इसका इसी अधिनियम का दूसरा भाग है जो CCL को ध्यान में रखकर पारित किया गया है। CCL यानी वो बच्चे जो विधि का उल्लंघन करने वाले हैं, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, या फिर वो बच्चे जो विधि के दायरे में आते हैं। अब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वो बच्चे हैं जो बच्चे जिन्होंने कोई क्राइम किया है, छोटा मोटा अपराध किया हो, चाहे चोरी हो, लड़ाई झगड़ा हो, मोटर एक्सीडेंट्स के केसेस हैं। और आजकल आपने देखा है छोटे बच्चे घर में, अगर माता पिता भी नहीं रोकते हैं, हमें अच्छा लगता है हमारा बच्चा कुछ दूसरे बच्चों से अलग कर रहा है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी अपने छोटे बच्चों को सब कुछ सिखा देना चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उसमें आजकल ड्राइविंग का जो बच्चों में क्रेज़ है, तो जैसे ही 15-16 साल का होता है, 14 साल का भी है, हमारे घर में व्हीकल है तो हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं। सिखाना बुरी बात नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन उस व्हीकल को लेकर सड़क पे आना विदाउट लाइसेंस, बिना किसी प्रिकॉशंस के, बिना किसी सावधानी के हमारे बच्चे सड़कों पे आते हैं, और फिर बच्चों में देखो ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं,
0: बचपना है, बिल्कुल
1: बिल्कुल, उनको सही और गलत की पहचान बिल्कुल नहीं है। ऐसे में वो बच्चे बहुत तेज स्कूटी, बाइक या कुछ भी, जो भी व्हीकल है, चला रहे हैं सड़क में, जब चलते हैं तो अपनी जान को तो जोखिम में डालते ही है, साथ ही में और राहगीरों की जान भी जोखिम में आती है।
0: जी,
1: इस तरह के बच्चे भी हैं। और इसी तरह जो दायरे में आते हैं विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के साथ, वो बच्चे भी हैं जो विधि के दायरे में आते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कोई क्राइम देखा है। आपने सुना होगा कि जब भी कोई क्राइम होता है तो गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, और गवाह वही होते हैं जिन्होंने क्राइम देखा है। वो बच्चे भी इसमें शामिल हैं, उनकी प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा गया है। जैसे मानो किसी बच्चे ने कोई गलत काम होते हुए देख लिया, मर्डर होते हुए देख लिया, तो उसकी गवाही बहुत अहम है, तो उस बच्चे की प्रोटेक्शन का भी सरकार बहुत ध्यान रखती है। इसके साथ साथ यौन अपराधों से जो पीड़ित बच्चे होते हैं, रेप विक्टिम्स हैं या किसी भी प्रकार के पीड़ित बच्चे, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। यही किशोर न्याय अधिनियम की विशेषता है कि इस अधिनियम में बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको किशोर की तरह, एक व्यसक व्यक्ति की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा जब कोई बड़ा व्यक्ति अपराध करता है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसके साथ इंटरोगेशन होता है, बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं उससे हासिल की जाती हैं, उसके साथ कई बार आपने सुना होगा थर्ड डिग्री टॉर्चर भी होता है, लेकिन बच्चों के मामले में ये सब नहीं होता। जब भी कोई बच्चा विधि का उल्लंघन करता है, किसी कानून को तोड़ता है या कोई भी अपराध करता है, तो उसको बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। पुलिस उसको एकदम से अरेस्ट नहीं कर सकती है। इसमें भी अलग अलग पहलू इसके हैं। बच्चों की अरेस्ट के लिए स्पेशल जुविनाइल पुलिस यूनिट है, जो बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, उसको अपराधी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, उसको सामान्य जेल में नहीं रखा जाएगा। तो ये बहुत सारी विशेषताएं इस अधिनियम के तहत थी, और इन सब का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि बच्चा अगर उससे गलती, वैसे भी हम नहीं मानते हैं कि वो अपराधी है, इस अधिनियम के तहत बच्चे को बाल अपचारी बोला जाता है जिसने अपराध किया है
0: जी।
1: और अगर बाल अपचारी कोई ऐसा पुलिस उसको अरेस्ट तो करते ही नहीं है, जब भी इस तरह का बच्चा कोई हमारे सामने आता है तो उसे विशेष पुलिस इकाई के माध्यम से सारे मामले की छानबीन की जाती है। और अगर बच्चे को कहीं शेल्टर में रखना पड़ता है तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन होम है, जो बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम में बच्चे को रखा जाता है। मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बच्चे की एजुकेशन बीच में नहीं रोकी जाती है, वो जो कुछ भी करता है या करना चाहता है उसको पढ़ाया लिखाया जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि अगर बच्चा किसी अपराध में संलिप्त हो गया है तो लोग उसको विक्टिमाइज ना करें, उसको क्रिटिसाइज ना करें, किसी भी तरह से उसको प्रताड़ित ना करें, टॉर्चर ना करें, कल को उसका पुनर्वास हो। और गंभीर अपराध अगर बच्चे ने किया है तो उसकी पूरी तरह से ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसका कौशल विकास किया जाता है, ताकि जब भी वो ऑब्जर्वेशन होम से, सुधार गृह से वापस आता है तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और दोबारा उसको अपराध की ओर जाने का मौका ना मिले।
0: बिल्कुल सही कहा रूमा जी ने, क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है, बच्चे होते हैं और बच्चों के दिमाग पर जो है बहुत जल्दी किसी भी बात का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो जैसा कि रूमा जी ने कहा कि जब भी कोई बच्चे से अगर इनकेस कुछ गलत हो भी जाता है तो लोगों का क्या होता है कि सीधे उन्हें ब्लेम पे आ जाते हैं, या तो उन्हें उस तरीके से एक तरह से हम बच्चों को बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा अगर उस चीज़ से बाहर निकलना भी चाहता है तो वो उन बातों को सुन के फिर से उसी चीज़ में, या तो उसके अंदर एक डर सा बन जाएगा, वो लोगों के साथ जो है बात नहीं कर पाएगा, सोसाइटी के साथ वो नजरें नहीं मिला पाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो वहाँ पर हम लोगों का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि अगर बच्चा वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो हमें बच्चे का सपोर्ट बनना है, ना कि एक तरह से उसे क्रिटिसाइज करना है।
1: बिल्कुल। और देखो ना रुचिका, हमारे संविधान की ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बच्चों को खुशहाली के लिए, बच्चों के विकास के लिए अलग अलग तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। जब हमारे कानून बच्चों की फेवर में है तो उनके विकास के लिए या उनको उन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए बनाए गए हैं, तो हम लोगों को भी मिलजुल कर एफर्ट करने चाहिए
0: जी।
1: अगर हमारे आसपास किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो बार बार उस बच्चे को उस गलती का एहसास ना करवा कर उसको समझाया जाए, उसको उस दायरे से बाहर निकाला जाए, ताकि वो भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह विकास हो उसका, और वो भी एक फ्रूटफुल जो अपना दे सकता है इस सोसाइटी के लिए, वो करने के लिए सक्षम हो सके।
0: बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब बच्चों को तो खैर एक अलग बात है, अगर बड़ों के साथ ही ऐसी कोई घटना हो जाए, या नॉर्मल सी बात अगर हम बोलें कि हमसे ही कोई गलती हो जाए और बार बार हमें पेरेंट्स जो है उस चीज़ के लिए बोलेंगे, तो फिर हमारे मन में जो है ना एक डर भी होता है, कई बार होता है कि नहीं मेरे से ये गलती हो गई है तो मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। पर जब वो बार बार उस चीज़ के लिए हम बच्चे को बोलते हैं कि नहीं तूने ही ये गलती की है, या तेरी वजह से हम ये फेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में वो बातें चल रही होती हैं और उसी वजह से जो है फिर क्राइम बढ़ते जाते हैं, और बच्चा जो है एक तरह से एक निडर भी हो जाता है कहीं ना कहीं कि नहीं सुनना तो मुझे है ही।
1: बिल्कुल, जैसे तो वहाँ ढीठ हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, ढीठपन जो है बच्चों में देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं फिर हम बच्चे को गलत डायरेक्शन में भेजने के लिए जिम्मेदार जो है वो हम खुद ही हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, वैसे भी बच्चे कहते हैं ना एक छोटे से गमले के पौधे की तरह हैं।
0: बिल्कुल,
1: जिनको हमें बार बार खाद भी देनी पड़ती है, पानी भी देना पड़ता है
0: जी।
1: जिस तरह से हमें गमले के पौधे की देखभाल करनी पड़ती है, अपने बच्चों की भी वैसे ही देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ और, अगर गमले में ज़्यादा पानी और खाद पड़ जाए तो वो ख़राब भी हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो एक बैलेंस जो है बच्चों के परवरिश में पेरेंट्स को बना के जो रखना पड़ता है वो बिल्कुल रखना चाहिए। ओवर प्रोटेक्शन भी सही नहीं है। कई बार पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि हम लोग आजकल आपको पता है सभी वर्किंग है,
0: बिल्कुल,
1: माता पिता काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और होता क्या है कि हमारे पास बच्चों की बात सुनने का समय नहीं होता है। हम घर आएंगे, अपना काम करेंगे, टीवी देखेंगे, लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे, सगे संबंधियों से बात करेंगे, लेकिन बच्चा अगर हमसे कुछ कहना चाहता है तो हम उसको
0: डांट डपट
1: के पीछे या बाद में बात करना ये बोल देते हैं।
0: जी।
1: हमें थोड़ा सा समय अपने बच्चों की बात सुनने के लिए जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बच्चे की बात सुन सकते हैं तो हो सकता है कि उसके मन में जो कुंठाएं, जो समस्याएं लेके वो हमारे सामने आया है उनको खुल के बात कर सके और उसका जो दिमाग है वो नेगेटिविटी की ओर ना जाके सकारात्मकता की ओर आए।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि बोलते हैं ना बात करने से जो है हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सलाह जो है वो जरूर मिलती है, और बच्चे अगर पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे तो वो किससे बात करेंगे? और उनको पेरेंट्स का समय दे जो मिलना चाहिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने बच्चों को इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो वो बाहर किसी गलत सोसाइटी में पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई सुनने वाला तो चाहिए, क्योंकि उनके मन में जो बातें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं तो वो निकालेंगे अपनी कंफर्ट जोन से, वो देखेंगे।
1: रुचिका, आपने देखा होगा जब बच्चे के मन में कोई जिज्ञासा होती है ना, और हम माता पिता या भाई बहन परिवार के सदस्य उस जिज्ञासा को शांत नहीं करते हैं तो बच्चे गलत तरीकों से उस बात की जानकारी के लिए अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे या फिर इंटरनेट के माध्यम से उस बात को जानने की कोशिश करते हैं।
0: जी, और जब दोस्तों से पता चलेगा तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हर कोई सही राह दिखाने वाला नहीं होता है,
1: और सबके साथ वो उनके दोस्त भी तो बच्चे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और बच्चों के पास आधी अधूरी जानकारी होती है।
0: जी,
1: और आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही सही नहीं होती, कई बार हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाती है।
0: जी।
1: तो अपने बच्चों के साथ जरूर बैठें, उनकी बात जरूर सुने।
0: फिलहाल अपनी बातों को थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।
1: बिल्कुल, और एक गीत जरूर सुनेंगे अभी।
0: जी, तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को, और वापिस आते हैं इन्हीं प्यारी सी बातों के साथ और मनोरंजन के साथ। अब तक आप एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को।

0: बेटा।
1: रोजो 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे हौसलों की उड़ान, अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
2: रूमा के साथ।
1: जी दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत तो आप सभी ने एंजॉय कर लिया है, अब हमारी प्यारी सी बातों को भी एंजॉय कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किशोर न्याय अधिनियम के बारे में। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो है क्राइम को किस तरह से परिभाषित किया गया है, किस तरह से इसको अलग अलग श्रेणी में रखा गया है।
2: बिल्कुल रुचिका जी, किशोर न्याय अधिनियम में जो क्राइम है उसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। एक है पेटी ऑफेंस, दूसरा है सीरियस ऑफेंस और तीसरा है हीनियस। जो पेटी ऑफेंस हैं वो ऑफेंस हैं जिनमें 3 साल से कम सजा होती है
1: जी।
2: सीरियस ऑफेंस में 7 साल तक की सजा होती है और इससे ऊपर जो सजाएं हैं 7 से आजीवन कारावास या फांसी की सजा, हालांकि बच्चों को इससे मुक्त रखा गया है
1: जी।
2: लेकिन कुछ एक मैटर हैं, जैसे हमने पिछले किसी एपिसोड में बात करी थी पॉक्सो एक्ट की
1: जी।
2: तो पॉक्सो एक्ट में अगर किसी 12 साल से नीचे की बच्ची के साथ रेप होता है तो फांसी की सजा का प्रावधान है, और ऐसे में अगर कोई किशोर भी जिसकी उम्र 17-18 के बीच में है अगर वो भी, तो उसको हीनियस क्राइम में रखा गया है। मतलब वो अपराध जिनकी सजा की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है वो हीनियस क्राइम में है। इसमें कई प्रकार के अपराध हैं, जैसे यौन अपराध हैं, ड्रग्स से रिलेटेड अपराध हैं, मर्डर या और भी कई प्रकार के केसेस हैं जो जिनकी सजा 7 साल से ऊपर होगी वो हीनियस क्राइम में रखे गए हैं।
1: जी रूमा जी, आपने बहुत सही बात कही है कि आप सभी को बता दिया है दोस्तों कि किस तरह से क्राइम को परिभाषित किया गया है और अलग अलग श्रेणियों में जो है उसे बांटा गया है। रूमा जी ने बात की कि नशे में बच्चे क्राइम कर जाते हैं या नशे की ओर चले जाते हैं, तो मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी। क्योंकि पता है क्या होता है, जब पेरेंट्स जो है उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं या तो उन्हें किसी बात के लिए प्रेशराइज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में चले जाते हैं, और जब वो बाहर फिर बच्चों के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हमें नशे का सहारा लेना है।
2: बिल्कुल, और आजकल के युवा तो नशे की ओर जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम लोगों की, पेरेंट्स की, खासकर बच्चों से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं।
1: बहुत ज्यादा।
2: अगर पड़ोसी का बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो हम अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हैं वो भी अच्छा करे, वो भी उन बच्चों से बढ़ के करे। हालांकि देखिए, हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हर किसी में अपने अपने गुण हैं, और हम उन गुणों को नजरअंदाज करके ये नहीं सोचते हैं फलांगा का बच्चा डॉक्टर है तो मेरा भी डॉक्टर बनेगा, हालांकि मेरे बच्चे की सोच कहीं और जाने की है। तो हम अपनी उम्मीदों को भी अपने बच्चों पे थोप देते हैं और ये बच्चे को तनाव की ओर ले जाते हैं, और आज के समय में तनाव हर किसी को है,
1: बिल्कुल
2: बच्चों को भी है, और पढ़ाई का स्ट्रेस है, माता पिता की अपेक्षाओं का स्ट्रेस है, और ये सारी चीजें बच्चों को कहीं ना कहीं अपराध की ओर ले जा रही हैं। जब बच्चा नशा करेगा तो ऑब्वियस है अपराध करेगा, नशे की पूर्ति के लिए चोरी चकारी भी करेगा,
1: बिल्कुल
2: गुंडागर्दी करेगा, अगर कुछ नहीं होगा तो मारपीट करेगा।
1: और यहाँ पर कहीं ना कहीं पता है क्या होता है रूमा जी, अक्सर पेरेंट्स को पता चल भी जाए, क्योंकि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है नशे में गया है या फिर वो कुछ गलत हैबिट्स में गया है, तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है। पर वहां पर अगर माता पिता इग्नोर कर देते हैं या तो उन्हें पता चल जाता है कि हमारा बच्चा इस गलत आदत में चला गया है, तो कहीं लोगों को पता ना चल जाए, उन्हें बात दबाने के लिए जो है या तो बच्चे को बाहर कहीं भेज देंगे या तो वो मतलब कि खुल के बात नहीं करेंगे बच्चे से।
2: बिल्कुल, और ये जो चीजें हैं ये अपराध की और बच्चे को बढ़ाती हैं, उसका जो स्ट्रेस है और बढ़ता है। एक तो पेरेंट्स जब अपने आप से दूर कर देते हैं तो बच्चों को लगता है कि मैं ही शायद ऐसा हूँ कि मेरी जरूरत ही नहीं है किसी को।
1: बिल्कुल, और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जगह बदलने से शायद उसमें चेंजेस आ जाएं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता।
2: बिल्कुल ऐसा नहीं है, उस बच्चे को सामान्य बच्चे की तरह ट्रीट करने की जरूरत है, प्यार से बात करने की जरूरत है
1: जी।
2: अगर जरूरत पड़ती है, आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी मानसिक रोग का शिकार हो रहा है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहा है, उसकी आदतें चेंज हो रही हैं, तो उसको क्यों ना किसी मनोचिकित्सक से बात की जाए। हो सकता है वो अपनी बात आपसे ना रखे, उससे अपनी बात बता सके और इस तरह की जो स्ट्रेस लेवल है उसका वो कम हो सके
1: जी।
2: और अपराध की ओर बढ़ते हुए उसके कदम वहीं पे रुक जाए।
1: बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। पर अक्सर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम उसे मनोचिकित्सक के पास लेके जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि इनका बच्चा पागल हो गया है।
2: ऐसा बिल्कुल नहीं है, मनोचिकित्सक की जरूरत तो सबको
1: सभी को होती है। बिल्कुल,
2: हमें भी पड़ जाती है और जब हमें लगता है कि स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो गया है, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम खुद भी मनोचिकित्सक से मिल लेते हैं
1: जी। तो ये मतलब एक छोटा सा ट्रीटमेंट, अगर उस ट्रीटमेंट से बच्चे की जिंदगी बच जाती है तो उसमें बुराई तो कोई नहीं है।
2: रुचिका, आपको एक और बात बताऊं, मैं मनोचिकित्सक के लिए जरूरी नहीं है कि हमें दूर जाना है। अक्सर लोग मजाक में बातें कर जाते हैं, पागल हो गया, इसको अमृतसर ले जाओ या वहां ले जाओ, वहां जाने की जरूरत नहीं है। मनोचिकित्सक भी सामान्य चिकित्सक की तरह होता है और ये हमारे जोनल हॉस्पिटल में भी हैं और टांडा मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध रहते हैं
1: जी।
2: अगर किसी के बच्चे को ज़रूरत है, उनको लगता है कि बच्चे को मिलना चाहिए डॉक्टर से, तो वो मिल सकते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे की करियर काउंसलिंग के लिए भी मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो बीमार है, बच्चे की जो पहचान उसके भीतर जो कैलिवर है उसको हम नहीं पहचान पाते हैं, तो हम मनोचिकित्सक के माध्यम से उसकी उस प्रतिभा को जान सकते हैं। तो अपने बच्चे को अगर आपको लगता है तो हम उनसे मिल सकते हैं।
1: और खासकर ये जरूरत हमें तब पड़ती है, दोस्तों को ऐसा लगता है कि नहीं हमारे बच्चे को शायद कोई मतलब कि मेंटली डिस्टर्बेंस है, बट कहीं ना कहीं मतलब बात वही है, लैक ऑफ टाइमिंग है ना, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और लैक ऑफ कम्युनिकेशन।
2: बिल्कुल, ये दो चीजें बात बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जब आप बात ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बच्चा जो है क्या चाहता है। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स, मैं एक केस शेयर करना चाहूंगी, एक जस्ट बात मतलब सेशन में बात हो रही थी तो मैंने पेरेंट्स से ये पूछा कि कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आपके बच्चे की हॉबीज क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है। तो मुझे जवाब मतलब सुन के हैरानी भी हुई, पर पेरेंट्स का जवाब ये था कि हमने ये कभी नहीं पूछा।
2: बिल्कुल, और अक्सर आप पेरेंट्स को जब भी क्वेश्चन पूछते हो ना, आप काम करने के लिए किस लिए जाते हो, आप दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं,
1: बिल्कुल
2: क्यों कमा रहे हैं, तो उनका जवाब होता है बच्चों के लिए,
1: बच्चों के लिए।
2: लेकिन जिन बच्चों के लिए हम कमा के ला रहे हैं उनके साथ दो पल हम बैठ के बात नहीं कर पाएंगे तो हमारी ये सारी कमाई धरी की धरी रह जाएगी और बच्चे का भविष्य जो है उसको हम सवार नहीं पाएंगे। हालांकि हम कमाते अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए हैं, लेकिन अगर हम चंद मिनट अपने बच्चों के साथ बैठ के उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, तो पता नहीं ये छोटा सा जो समय हमने अपने बच्चों को नहीं दिया है, ये इसका भुगतान हमें कहाँ करना पड़े। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि जब भी समय मिले अपने बच्चों के साथ ज़रूर बैठें, उनके पहले दोस्त आप ही हैं, उनको अपने दोस्तों से आधी अधूरी जानकारियां हासिल ना करने दें। कोशिश करें जो भी उनकी क्वेरीज हैं, जो भी जिज्ञासा है, उसको आप खुल के सुने और उनको खुल के उनकी समस्याओं का हल भी बताएं।
1: जी बिल्कुल, और जब पेरेंट्स, जब बच्चे हाथ से निकल चुके होते हैं ना, या तो बहुत ही आगे जा चुके होते हैं गलत आदतों की तरफ, तब पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि कमी कहाँ रह गई, क्योंकि हमने तो प्रॉपर इनको पैसे जो हैं, जब भी इनको ज़रूरत पड़ी है इनको पैसे भी दिए हैं, जो इनको ज़रूरत की चीज़ें हैं हमने वो सब भी दी हैं, तो फिर आखिरकार कमी रही तो रही कहाँ। तो दोस्तों, कमी तो यही है लैक ऑफ कम्युनिकेशन।
2: बिल्कुल,
1: जो कि आपने समय नहीं दिया बच्चों को और ना आपने खुलकर बच्चों से बात की, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि आपके बच्चे चाहते क्या हैं, उनकी खुशी कहाँ पे है। तो वो पैसे से खुशी जो है दोस्तों कभी भी खरीदी नहीं जाती है, वो अपनेपन से उनको खुशी मिलेगी। और जब आप बात करोगे उनसे, उनको समय दोगे, तो वो आपसे हर बात शेयर करेंगे, हर बात जो है आपसे बताएंगे, चाहे फिर वो गलत रास्ते पे भी जा रहे होंगे तो घर पे वो बात जरूर करेंगे।
2: जब फ्रेंडली माहौल घर में मिलेगा तो बच्चा अपने मन की बातें अपने माता पिता से जरूर शेयर करेगा।
1: बिल्कुल, पर वहाँ पर लेकिन आपको नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा.
2: हाँ, बिल्कुल.
1: क्योंकि अगर आप बच्चे को बीच में टोकोगे और उसे जज करना शुरू कर दोगे तो बच्चा आपसे कुछ भी शेयर नहीं
2: बिल्कुल
1: करेगा.
2: बच्चे वैसे भी ना कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिस और ढालेंगे ढल जाते हैं.
1: बिल्कुल.
2: और जब हम बच्चों को बात बात पे टोका टाकी करते हैं, उनको उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करने देते हैं, तो उनकी जो अवसाद है वो बढ़ता जाता है, वो माता पिता से दूर होते जाते हैं और अपने लिए कंपनी बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं.
1: जी.
2: तो रुचि का समय भी हो रहा है एक और गीत सुनने का.
1: जी बिल्कुल, बहुत मन कर रहा है एक मीठा सा गीत सुनने का. तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं मिलकर इस प्यारे से गीत को. और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं इस समय मेरे हौसलों की उड़ान.

0: बहुत ही मीठा सा गीत सुनाया है रुचिका ने, और गीत के बाद बहुत ही फ्रेशनेस भी महसूस हो रही है, हमारे दोस्त भी खुश होंगे
1: जी,
0: तो रुचिका जी समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को।
1: जी बिल्कुल, और दोस्तों एक बार फिर से बता देती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं किशोर न्याय अधिनियम की। तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बात करते हैं कि किशोर न्याय अधिनियम जो है, इसे इसकी जो पहुंच है लोगों तक किस तरह से रहती है और ये कैसे काम करता है, तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दोस्तों को बताइए।
0: बिल्कुल रुचिका जी, किशोर न्याय अधिनियम का जो मेन फोकस है
1: जी,
0: वो हर एक बच्चे तो को जस्टिस पहुंचाना, एक बच्चे को मेन स्ट्रीमिंग में लाना, बच्चे के बढ़ते हुए अपराधों को रोकना, और जो बच्चे जरूरतमंद हैं जैसे अपाहिज हैं
1: जी,
0: उपेक्षित बच्चे हैं जिनको माता पिता ने छोड़ दिया है, गुमशुदा बच्चे हैं, या फिर अनाथ बच्चे हैं, सेमी ऑर्फन बच्चे हैं, या फिर वो बच्चे जिनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, उन बच्चों के लिए काम कर रहा है। साथ ही साथ ये कंफ्लिक्ट विद लॉ बच्चों के साथ काम कर रहा है। तो जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं, भिखारी या अन्य, उन बच्चों के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का हर जिला में गठन किया गया है। इस कमेटी का काम है उन बच्चों की देखभाल से संबंधित जरूरी आदेश पारित करना, साथ ही साथ उन बच्चों के पुनर्वास के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो करना, साथ ही हर जिला में राज्य स्तर पर और हर जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन किया गया है राज्य सरकार द्वारा। इस इकाई का काम है इन सभी बच्चों तक पहुंच बना के रखना, हर एक बच्चे को सरकारी सुविधाएं जो मिल रही हैं उनको पहुंचाना। इस अधिनियम के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी बच्चा उपेक्षित ना रहे, कोई भी बच्चा अनदेखा ना रहे, जो भी बच्चा जरूरतमंद है उस तक सरकार की हर एक पॉलिसी पहुंचे, और जिला बाल संरक्षण कार्यालय के साथ साथ जिला बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड, ये तीनों समितियां और साथ ही साथ चाइल्ड हेल्पलाइन और बाकी के जितने भी कार्यालय हैं जो बच्चों से संबंधित काम करते हैं, इसमें शिक्षा विभाग को जोड़ा गया है, स्वास्थ्य विभाग को जोड़ा गया है, साथ ही साथ AHTU है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, ये सभी यूनिट जो है वो मिलके काम कर रहे हैं बच्चों के संरक्षण के लिए, उनकी देखभाल के लिए और उनके समुचित विकास के लिए। मानो कोई बच्चा गुम हो जाता है कहीं पे, तो उस बच्चे की रिपोर्टिंग जो है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में पुलिस जो है वो उस बच्चे को लेके आती है। कोई भी बच्चा कहीं मिलता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देखती है कि अगर उस बच्चे का कोई अता पता नहीं है, कोई भी उसके पेरेंट्स क्या पता नहीं चल रहा है, कोई रिलेटिव नहीं मिल रहा है, कोई बच्चा गलती से अपने परिवार से बिछड़ के यहाँ आ गया है, तो ऐसे में उस बच्चे का पुनर्वास देखा जाता है सबसे पहले तो, कि उस बच्चे को रखा कहाँ जाएगा। ऐसे में इन बच्चों के लिए हर एक जिला में चाइल्ड केयर यूनिट बने हैं, जहाँ पे ऐसे बच्चे जो विस्थापित हैं, घरों से भागे हुए बच्चे भी हैं, उनको रखा जाता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को ढूंढने के प्रयास किए जाते हैं। ऑर्फन बच्चों को भी CCIs में रखा जाता है। सरकार उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके कपड़ा जो भी है, उनका हर एक चीज़ का ध्यान रखती है। इन बच्चों को स्पेशल स्कॉलरशिप मिल रहे हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, और जो ऑर्फन बच्चे हैं जिनका कोई भी इस दुनिया में नहीं है, उनका पुनर्वास हो सके। जो गुमशुदा बच्चे हैं उनकी फैमिली को ढूंढा जाता है, उनके परिवार से मिलाया जाता है, और कई बार पॉक्सो विक्टिम्स भी हैं। कई बार ऐसे होता है रुचिका जी, हमने पहले भी बात की थी कि हम पीड़ित को ही हम अपराधी मान लेते हैं, उसी के साथ हम दुर्व्यवहार करते हैं
1: जी।
0: तो यौन अपराधों से पीड़ित अगर कोई बच्ची है, उसको पेरेंट्स या फैमिली अपने साथ नहीं रखना चाहती है, तो ऐसी बच्चियों का पुनर्वास भी किया जाता है, उनको CCI में रखा जाता है जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती
1: जी।
0: वैसे भी किशोर न्याय अधिनियम के तहत 18 साल तक के बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाती है।

0: और इसके साथ साथ किशोर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन बच्चों का समय समय पर फॉलोअप भी करती है कि उनको जो सुविधा मिली है वो सही मिल रही है कि नहीं
1: जी।
0: चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में 5 सदस्य होते हैं, 1 चेयरपर्सन और 4 सोशल वर्कर हैं जिन्होंने बच्चों के साथ किसी भी फील्ड में काम किया हो, चाहे एजुकेशन के डिपार्टमेंट में किया हो या किसी अन्य NGO के साथ जुड़े हों या कोई भी उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता है इसमें। इसमें 2 महिला रहती हैं चेयरपर्सन के साथ, 2 महिलाएं और 2 पुरुष होते हैं जो मिलके काम करते हैं। इनकी कोई छुट्टी नहीं होती है
1: जी।
0: मतलब ये जो संस्था है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है ये 24/7 काम करती है। छुट्टियां जैसे इनका रोटेशन वाइज इनकी ड्यूटीज होती हैं, तो रोटेशन चार्ट जो है वो हर एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो सभी विभागों को भेज देती है, पुलिस को, एजुकेशन डिपार्टमेंट या जहाँ भी वो ज़रूरत है उनकी
1: जी।
0: वो सभी को भेजा जाता है। इसका पर्पज़ ये होता है कि अगर कोई बच्चा रेस्क्यू किया जाता है कहीं से भी, चाहे वो नशे वाला हो, कोई भी हो
1: जी।
0: उसका पुनर्वास हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि पुलिस बच्चे को थाने में तो नहीं ले जा सकता, ना ही उसको जेल में रखा जा सकता है। तो ऐसे में रोटेशन चार्ट जो है वहाँ भेज दिया जाता है हर विभाग में, और जब भी उस बच्चे को कहीं भेजना होता है, कहीं रखना होता है, उसके संदर्भ में कोई भी ऑर्डर पुलिस को चाहिए होता है तो वो उस संबंधित जो मेंबर है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का उसके पास उस बच्चे को भेज दिया जाता है। चाहे वो रात के 12 बजे बच्चे को रेस्क्यू किया है, चाहे 1 बजे किया है या दिन में किया है। और अगर उस दिन जैसे मानो छुट्टी है, कोई त्यौहार है, फेस्टिवल है, संडे की छुट्टी है
1: जी।
0: तो ऐसे में वो उस मेंबर के घर पे भी उस बच्चे को पेश करके उसके संदर्भ में ऑर्डर पास करवाया जा सकता है। इसी तरह स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, जब भी किसी बच्चे के अगेंस्ट कोई अपराध दर्ज होता है, कहीं भी कोई रिपोर्टिंग आती है कि कोई बच्चा पकड़ा गया है, तो ऐसे में स्पेशल जुवेनाइल यूनिट उस बच्चे के रेस्क्यू के लिए या उस बच्चे के संदर्भ में जो भी कार्रवाई करनी होती है उसके लिए जाता है। तो ऐसे में इस संदर्भ में रुचिका जी, ये मैंने पहले ही कहा कि किशोर न्याय अधिनियम जो है ये अपने आप में बहुत ही व्यापक कानून है जिसके बारे में सिर्फ एक घंटे में चर्चा
1: समय में
0: नहीं
1: हम
0: है।
1: दोस्तों के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं ना।
0: बिल्कुल, 1 घंटे में इस सारी बात को हम अपने दोस्तों तक नहीं रख सकते हैं
1: जी।
0: तो मुझे लगता है कि समय का अभाव भी है।
1: बिल्कुल,
0: और इसी के साथ अगर मैं कहूँ कि अगले एपिसोड में हम चाइल्ड स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के बारे में चर्चा करें
1: जी।
0: और साथ ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में चर्चा करें, तो हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि इस एक्ट के तहत बच्चों को हम किस तरह से उनकी जरूरतों को देखते हुए उनके साथ जस्टिस कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जल्दी जल्दी में हम सारा कवर करें और आपको कुछ समझ में ही ना आए।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए हम धीरे धीरे आपके अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो चाहे फिर उसके लिए हमें 2 या 3 प्रोग्राम भी बनाने पड़ेंगे तो
0: मुझे
1: हम बनाएंगे।
0: लगता है कि बहुत बड़ा विषय है जिसको 1 एपिसोड में हम पूरा नहीं कर सकते हैं
1: जी,
0: और इसके लिए हम अगली बार फिर से इसी विषय के साथ अपने दोस्तों से रूबरू होंगे
1: जी। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं बच्चे जो हैं आने वाला कल है, यानी कि हमारे देश का भविष्य है, कल का भविष्य है, तो उनके लिए हम इतने इग्नोर तो हम नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों का भविष्य बहुत ही ज़रूरी है, उसे संवारना, उसे सिक्योर करना। पर ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमने ये जानकारी दी है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही अपने लिए आवाज़ उठाएं इस जानकारी को जानकर। अगर आप भी अपने आसपास ऐसा कोई अन्याय होते हुए देख रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो भी सुविधाएं जो हैं बच्चों के लिए बनाई गई हैं, तो आप उन बच्चों को उनसे रूबरू करवाइए और उन बच्चों की मदद कीजिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकें।
0: बिल्कुल,
1: तो मुझे लगता है कि आज हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचाई है, और आप सभी इस जानकारी को ज़रूर अपने आगे बढ़ाएंगे, अपनों के लिए जो कि ज़रूरतमंद है उन्हें बताएंगे। तो अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो दोस्तों आप सभी का अगर कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल हो, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो और आप हमारे साथ जुड़कर उस सवाल के जवाब चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और हम किसी कार्यक्रम में

0: नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 9418431223। इसी विषय के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और अपनी बातें साझा कीजिए हमारे साथ।
1: जी दोस्तों, अब दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और रूमा गुलेरिया जी को। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ इसी विषय के साथ अगले हफ्ते। तब तक आप सभी इसी तरह से इंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं, ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबुधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है।
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी एक मिनट, अरे बिरजू वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
4: मास्टर जी टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।

0: ऐसे ना आजकल हड्डी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
1: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
0: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए। फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं।
1: फिर
0: क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
1: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
0: हाँ देख लो क्या हो गया।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो कुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला है ते तुसी 91.2 MHz ते बने होए हो। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। उम्मीद है पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम च तुसी काफी इंजॉय कर रहे हो। तां हुण पेश कर रहे हां प्रोग्राम दा आखरी पंजाबी गीत।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है।
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है?

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117019। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रूपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रूपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। फिर भी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं।

कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे दई शशि दा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा नमस्ते है तो हाँ सारे ही ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा रोजाने दा काम में से आज भी करा दे उन्हें न दिने दी शुरुआत हाँ अलग तरीके ने कर दी न क्योंकि हर दिन आह वास्ते बेहतर खास होंदा पर से यहाँ पर निर्भर करता कि यहाँ अपने दिने जो किस प्रकार जिड़ा खास है से बना दे न 8 मई 2026 कने शुक्रवार दा ये दिन तो हाँ जिड़े से इंजॉय करा दे न कने समय दी यहाँ गाल करिए तो 2:02 कार्यक्रम च बिल्कुल जड़े से हो न कने बाकी जड़े समय है से तुह तक रहना है 2 से 3 बजे तक तो तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्नै जुड़ी सकदे कने अहां कन्नै गलबात जड़े से जरूर करी सकदे तो इंतज़ार मत करा क्योंकि इंतज़ार दी जड़ा घड़ी है से तुह वास्ते बेहतर लंबी थी पर हुण जड़े से बिल्कुल ख़त्म होंदी है तो जुड़ने वास्ते जिहड़ा अहां दा नंबर है 7701817091 तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा आगाज़ अहां कर दें कार्यक्रम दा इस प्यारे दे गीत कन्नै तो हां सारे भी इस गीत जो इंजॉय करा

0: श्रोताओं 2000 सुनिया प्यारा दिया गीत प्यारी दे शुरुआत शुरुआत हाँ इस गीत कने कीती है कने तो हाँ सारे ही इस वक्त जुड़े न रेडियो गुंजन धर्मशाला कने कार्यक्रम तो हाँ सारे इस वक्त सुना दिन मटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कने दशो तो तुम सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र करने जुड़ी सकते कने हाँ अपने सफ़र जो थोड़ा दिया गलबात की ओर लेकर चलते न गलबात की ओर लेकर जाना भी जरूरी है। बार बार अहाँ मौसम की ओर अपनी जड़ा नज़र है से हमेशा लगा न या मौसम जो अहाँ दिखते न दिखना तो बनता है ना क्योंकि मौसम के अनुसार चलना भी अहाँ वास्ते जरूरी है। ता अजकने दिने दी गल करिए ता अजकना जिड़ा तापमान है से अधिकतम 16 डिग्री है कने न्यूनतम तापमान जिड़ा से 9 डिग्री के आसपास रहने दी जिड़ा संभावना है से मौसम विभाग ने जिड़ा से जताई हुए है। तो मौसम के अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते जरूरी है। मौसम दी जिड़ा स्थिति है से फिलहाल आसमान च गर्ज कने जिड़ा बिजली है से लगने की संभावना तो थोड़ी बहुत है पर बादल जड़ा से जरूर छे न कने किसाना जो थोड़ी देर राहत तो मिली थी पर फिर ते दिना दे जड़ा चेहरे न से थोड़े दे उदास जड़न से होइए न पर हर कुसी दी जवानी सुन दे न किसान हैं तिना दी जवानी तिना दी जड़ा आवाज़ है जल वहाँ सुन दे न कि फसल दे क्या हाल चाल हैं तो कुथी ना कुथी फसल दे हाल चाल यही है कि नुकसान जड़ा से अहाँ जो दिखने जो मिला था जल्दी जल्दी अहाँ जड़ा कणका न से कटा दे या कटाई तिना दे करा दे फिर मौसम अपनी करवट जड़ा से बदला दा तो तिदी वजह ने भी कणक जड़ा से खराब हुई आती पर जड़ा मौसम दे अनुसार वेले हो या जड़ा कम्मे ते फ्री हो तिना वास्ते तो अच्छा है पर जड़ा अली कम्मे ते फ्री नहीं हो तिना वास्ते तो थोड़ा दिया मौसम दी ओर ध्यान लगाना भी जरूरी है क्योंकि मौसम दे अनुसार चलते न ताई यहाँ अपने काम जड़े से करी पाते न बरखा दा जड़ा होने की संभावना है से 65% जड़ा से संभावना दसी हो तो हाँ जड़ा मौसम दे अनुसार चलना क्योंकि मौसम के अनुसार चलना जरूरी है। कने माटी दी महक कार्यक्रम दे सफ़र कने तो सारे भी जुड़ी सकते जुड़ने वास्ते जिड़ा हाँ दा नंबर है से फ्री ते नोट करा क्योंकि नंबर नोट करके ताई तो इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते। नंबर है 7018117091 तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा। तो श्रोताओं क्रोध की अहाँ गल करिए तो क्रोध जड़ा से सब कुछ अहाँ ते छीनी लैंदा है कने अगर अहाँ शांत रह करी कोई काम करते न या अहाँ जड़ा भी कमाए है से अहाँ क्रोध च गवाई दे न ता क्या फायदा। तो क्रोध च कने शांत रहने च बड़ा ज़्यादा फर्क है कने अहाँ दे जड़ा शब्द हैं से अहाँ जो सब कुछ सिखाएंगे इस शब्द जड़ा है अगर हाँ किस प्रकार अपनी जड़ा सोच विचार है या अपनी सोच जड़ा है से किस प्रकार रखते न तो शो तो फिर तो हाँ थोड़ा दे अगे बढ़ना है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र करने जुड़ी सकते तो जल्दी जल्दी जुड़ा कने फिर तो हाँ थोड़ा दे अगे बढ़ते न कने अगली जड़ा फरमाइश अगला जड़ा गीत है से तुह तक पहुँचाते न क्योंकि इंतजार की जड़ा घड़ी है से फिर ते तो वास्ते ख़त्म कर देना पर अहाँ दे पहले श्रोता अहाँ कने जुड़ चुके हैं ना तिना कने कर देना गल बात। हेलो
1: हाँ जी नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा बड़ा बड़ा रेडियो गुंजन धर्मशाला च जी ता तुहां को तुते बोला दे कने तुहांदा ना क्या है जी।
1: जी मैं प्रकाश से बोला सुखे भाग्य से।
0: जी प्रकाश जी सुखे भाग्य आए दया क्या हाल चाल है मौसम किस प्रकार है उस साइड।
1: हाँ थोड़े दे बदल है थोड़ी धूप भी है जी।
0: जी अच्छा थोड़ी दे धूप भी है थोड़े दे बदल भी है ना।
1: हाँ जी का रंगा काम अलग ही है।
0: जी अच्छा रंगा का काम जड़े से कुछ लगाया तो हाँ
1: एक तिरा या निर्णय पर भी वाड़ के ऊपर पड़ा और टिन ऊपर ना पाम बढ़ जाएगा।
0: जी जी
1: हाँ जी जी
0: जी ता तो हाँ ਉਹੀ ਬੇਲੇ ਕਣਕਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣੇ
1: हाँ जी 15-20 दिन हुई है भेजे हुए हैं
0: जी। अच्छा उस साइड निचली साइड जल्दी हो जाते ना जी बेले?
1: हाँ जल्दी हो जाती है। हाँ जी हाँ जी
0: जी उपली साइड तो अली काम पे है ना जी।
1: हाँ जी मैं भी यार पालमपुर गया था यार कच्चियां नहीं कणक ऊपर में गया।
0: जी जी पालमपुर वाली साइड तो कच्चियां ही है ना जी उस साइड चमंडा वाली साइड ना जी।
1: हाँ पर डाय कणक ऊपर में थोड़ी कच्चियां ही हैं।
0: जी जी तो सही है ना कि मौसम अपना चेंज करा था ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी तो है क्या लगता मौसम किस प्रकार अपना जेड़ा बदलाव ऐसे लैदा गर्मी है जहां जो सर्दियां वाली जेड़ा ठंड ऐसे महसूस हो दी ना
1: हाँ
0: जी।
1: जी हाँ जी इस
0: जी
1: टाइम भाई में लग गया कितनी गर्मी होनी है इस
0: जी
1: टाइम।
0: बड़ी ज्यादा। हाँ
1: हाँ जी
0: जी पर मौसम कुछ ठंडा ठंडा है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी तो प्रकाश जी और नोई ताजी सुक्के बागी दी
1: नौ ताई कुछ भी नहीं लगे कम्मे कना थोड़ा खराब मौसम पति है ठंडा। हाँ
0: जी मौसम तो ठंडा ठीक है ना जी थोड़ी
1: हाँ जी हाँ
0: गर्मी ते भी
1: जी
0: राहत है पर मौसम कुछ बदलाव है ना जी मौसम च।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी तो प्रकाश जी आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना पसंद करके
1: बाबे भाई लाइन लंबी उड़ा रहा मेरे पापा।
0: जी लंबिया उड़ा रहा मेरे पापा
1: हाँ जी
0: जी सर
1: धन्यवाद जी
0: जी तो हाँ दा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी जुड़ने वास्ते जी।
1: धन्यवाद।
0: ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮ ਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਾਟੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕਰਨੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਕਨੇ ਆਹਾਂ ਕਰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਤਾਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਹਾਂ ਕਰਨੇ ਜੁੜਿਆ ਕਨੇ ਆਹਾਂ ਕਰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਕਰਾਂ ਕਨੇ ਆਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕਰੀ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ फरमाइश की ओर जाना भी ज़रूरी है पर कार्यक्रम जहाँ ज़रूर किसी न किसी विषय पर भी जेड़ा अपनी गलबात है से रख दें तो हाँ तक कने तो हाँ भी मेरी गलबात जो जेड़ा है से ज़रूर ध्याने ने सुन देना क्योंकि ध्याने ने सुनना तो बनता है ना कोई भी गल है अगर हाँ ध्यान लगाई करी सुन देन या कोई भी यहाँ काम कर देन चाहे से घरे का काम है चाहे से कुथी का भी काम है अगर हाँ उस जो पूरी लगन ने कने पूरी मेहनत ने कर देन तो ज़रूर हाँ इस कमे च क्या देन सफलता जिड़े से यहाँ जो मिलती है चाहे तुहदा काम सिलाई द अगर तुह सिलाई करा देन तो तुह अगर पूरा ध्यान उस साइड लगा देन तो सह काम तुहदा जिड़े से प्रॉपर तरीके ने होंदा है कने अगर अहाँ ये सोची करी चल देना कि अहाँ अपना जिड़ा काम मैं सभी करा देन कने अहाँ तो इस कमे जो हमेशा ही सोचते हैं कि नहीं ये काम जिड़े से अहाँ तो नहीं होना है अहाँ नहीं करी पाना है तो कुथी ना कुथी अहाँ तो इस कमे च असफल जिड़े से जरूर हो जाते हैं। हूँ तो हाँ सोचा देने कि ना असफल हो जाते क्योंकि अहाँ हमेशा नकारात्मक विचार अपने अंदर रखा दे या नकारात्मक विचार जड़े से अपने अंदर भरा दे ता से कुथी ना कुथी अहाँ जो असफलता भी जरूर मिलती है तो शो तो चल देना कन्या अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना।

0: माटी दी मेह कार्यक्रम तो हाँ सारे सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने तो हाँ सारे सुनिया एक प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश। इस गीत की फरमाइश हाँ जो आई हुए नरवाणा ते कने तिना दा ना वे वंदना जी तक हाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय किया। तो शो तो सोच दी अहाँ गल करिए कि अहाँ दे जेड़ा सोच विचार हैं अगर अहाँ अच्छी सोच रखते न तो अहाँ हमेशा अपनी जिंदगी सफलता जेड़ा इसे जरूर पाते न। शायद अहाँ दी जेड़ा सोच है से अहाँ दे जीवन च मानसिक जेड़ा प्रक्रिया है तीजो बेहतर बनाने वास्ते अगर अहाँ सकारात्मक सोचते न या अपने जेड़ा सोच विचार हैं से अच्छे रखते न अहाँ दा जेड़ा सोच विचार हैं से हमेशा अच्छे होना जरूरी है। सोच जेड़ा अहाँ दी सोच है तीसरी जेड़ा शक्ति है से सबसे बेहतर है। मनुष्य यानी कि जेड़ा अहाँ सोचते न सही अहाँ अपने जीवन च करते न। अहाँ दी जेड़ा सोच है ना अगर अहाँ नकारात्मक सोचते न या अपने दिमाग ऊपर तनाव कने नकारात्मक विचार हमेशा अगर रखते न तो कुथी ना कुथी से जेड़ा नकारात्मक विचार हैं से अहाँ जो अगे बढ़ने नहीं देंगे न। अहाँ कोई भी काम करते न पहले यहाँ नकारात्मक सोचना शुरू करी देन कि नहीं ये काम अहाँ ते होना ही नहीं है यहाँ ये काम कर ही नहीं पाना है। कने अगर तुह सकारात्मक सोच रखते न या तुह सकारात्मक सोची करी चलते न तो जरूर तुह इस कमे जो करी पाते न। अगले श्रोता अहाँ कन्ने जुड़ चुके न कर देन तिना कन्ने गल बात। हैलो
1: हेलो नमस्ते सचिव जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना।
1: हां जी हां ठीक ठाक है तो बोला
0: जी यहां भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां कुथुते बोला दी कने तुहांदा ना के जी।
1: मैं तिमरोट के तो बोला ना रमेश मेरा ना है
0: जी। रमेश जी होई है बेले तुहां कणका ते।
1: हां जी परसो रात के बेले होए बेले का कल पूरी पास होई के होए बेले
0: जी। ता तंगलोटिया दा मौसम किदे है इस टाइम
1: आज तक ठीक ही है कहना लेकिन ये पढ़ाई की जो लग गई है कम सारा बोले तो गांव गांव सारा ही
0: जी। ता लगभग अली थोड़े बहुत है तंगलोटी वाली साइड भी ना जी।
1: हां जी हां ना ना
0: जी जी। ता रमेश जी आज हां जेड़ा गल बात करा दे ना से करा दे ना सोच पर आ हंदी जेड़ा सोच है से किस प्रकार होनी चाहिए दी तो है क्या लगदा
1: सोच का तो पता ही है अपने अपने
0: मेरे दिमाग च या मेरे मन च क्या चलिया से तो जो पता नहीं है पर तुहा क्या सोचा दे से मुझे भी पता नहीं है पर आहा कोई भी काम कर दे ना तो कई बार अगर अहाँ नकारात्मक सोचना शुरू हो जाते न तो इस कम जो अहाँ करी ही नहीं पाते अहाँ पहले ही हार मनना शुरू हो जाते ना जी। जी कने कई बार अहाँ कने हो भी चुके होंदा कने अहाँ फिर भी नकारात्मक बेशक अहाँ नहीं भी सोचना चाहन तभी अहाँ दे दिमाग च नकारात्मक जेड़ा विचार हैं से आई जाते ना जी। जी जी सही है ना कि प्यार भावना बिल्कुल खत्म है ना जी।
1: खत्म हो
0: रिश्तियां दी अहमियत जेड़ा है ना से आहा करना भूली हो बिल्कुल रोल निभा दे ना जी। पर सही है कि अहां यही सोच के चलदे कि सिर्फ अहां दा ही सब कुछ है पर जिंदगी दा तो कोई भरोसा नहीं है ना जी पल भर दा।
1: ना ना पता नहीं होना कल पल्ले पल्ले आटा कोदा मर जावे पता नहीं लगा था।
0: जी जी ता अच्छा सोच गए अच्छा काम करी करी जांगे ता अच्छा गुण गान हुंदा ना जी।
1: हां हां जी बिल्कुल ठीक है
0: जी। तरमेश जी आज तो हां कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: अज गाना सुना चने के दाल की खोया भाभी देर जा देर मारिया
0: जी जरूर ये गीत तुहां तक पहुंचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा जी तुशदा चल देना हाँ भी अगली फरमाइश की ओर तुहां तक ये फरमाइश यहाँ पहुंचा दे ना तुहां सारे भी इंजॉय करा।

तो श्रोताओं तुम सारे सुनिया ही प्यारा दिया भजन प्रकाश जी की फरमाइश से रहने वाले ने सुखे भाग दे तिना तक अहाँ ये गीत पहुँचाया कने फिर यहाँ वापिस जड़न से अपनी गलबात ऊपर आई हो न क्योंकि गलबात ऊपर होना भी अहाँ वास्ते जरूरी है। फिर ते तो हाँ सारे दई शशि दा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा नमस्ते है। 2:29 कार्यक्रम दे सफर च होई न कने तो हाँ सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहाँ कने जुड़ी सकते जुड़ने वास्ते जेड़ा अहाँ दा स्टूडियो दा नंबर है से अहाँ बार बार तुहां तक पहुँचाते न फिर ते नंबर जेड़ा है से नोट करी लिया अगर तुहां नंबर नोट नहीं कित्या नंबर है 7018117091 ते इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म है। तशो तो सोच दी अहाँ जिड़ा गल है से करा दे सोच हाँ किस प्रकार अपनी जिड़ा सोच है से रख दे न से यहाँ पर निर्भर करता है। हमेशा पॉजिटिव सोचने ने हर काम जिड़ा से अहाँ दा अच्छा होंदा है अहाँ दा जिड़ा नज़रिया है या अहाँ दी जिड़ा सोच है अगर अहाँ हर किसी दी सोच कने हर किसी दा जिड़ा नज़रिया है ना से अलग अलग अलग होंदा क्योंकि अगर अहाँ सकारात्मक सोचते न ता क्या होंदा सकारात्मक सोचने ने क्या होंदा जरा करी तुहां भी सोची करी दिखा कि सकारात्मक सोचने क्या होंदा। अगर अहाँ फैमिली दा एग्जाम्पल लैन कि फैमिली च अगर अहाँ अच्छा सोचते न अच्छे विचार अगर अहाँ बच्चों जो दिंदे न या पेरेंट्स भी अपने बच्चों जो अच्छे संस्कार अच्छा व्यवहार दिंदे न तो बच्चा अपनी जिंदगी च हमेशा सफलता दी ओर चलता है कने अगर सही अगर अहाँ नकारात्मक वेच उस बच्चे जो सिखाते न या नकारात्मक जेड़ा सोच है से अहाँ उस दे अंदर पाते न तो कुछ ना कुछ बच्चा जेड़ा से असफलता दी ओर बढ़ता है या असफल जड़े से अपनी जिंदगी चुनता है। अच्छे संस्कार देने ने बच्चा हमेशा अपने माता पिता का मान सम्मान करता है क्योंकि बच्चों जो भी अपने माता पिता ऊपर गर्व होंगे कि नहीं अहाँ दे जेड़ा माता पिता ने तिना अहाँ जो इतने बेहतर संस्कार दिते हो कि अहाँ बड़े या छोटे न तिना दा हमेशा मान सम्मान जड़े से करी पान मान सम्मान तो हमेशा करना बनता है चाहे बड़े न चाहे छोटे न चाहे कोई भी है अगर अहाँ मान सम्मान कर देना तो अहाँ हर कुछ जड़े से पाई लें देना पर से यहाँ पर निर्भर करता है से यहाँ दी सोच है अहाँ अपनी सोच किस प्रकार जड़े से रख देना सकारात्मक रख देना कि नकारात्मक रख देना। तो श्रोताओं तुम सारे भी इस कार्यक्रम के सफर करने जुड़िया जुड़ गए ताई तो तुहां गलबात अहाँ कन्ने करी सकते कन्ने आज अहाँ जेड़ा गलबात करा देना से करा देना सोच पर तुहें क्या लगता अहाँ दी जेड़ा सोच ऐसे किस प्रकार होना चाहिए जिससे अहाँ अपनी जिंदगी चगे बड़ी पान। तो चल देना अगली फरमाइश तुहां तक पहुँचा देना तुहां सारे भी इस प्यारी दिया फरमाइशा जो ज़रूर इंजॉय करा।

माटी दी मेह कार्यक्रम तो हाँ सारे ही सुना देन कने तो हाँ सारे ही सुनिया एक ही हित ये फरमाइश हाँ जो आई हुए तंगलोटिया ते कने तिना दा ना वे रमेश जी तक कहाँ एक गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय कीता। अगली जेड़ा फरमाइश है सभी तुहां तक पहुँचान देन तो हाँ सारे ही इसा फरमाइशा जो इंजॉय करा कने ये फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए टैक्स मैसेज के थ्रू कने से रहने वाले न चमंडा ते चमंडा बड़ोई ते कने तिना दा ना वे मीरा जी तक कहाँ ये गीत पहुँचा देना तो हाँ सारे भी इंजॉय करा।

कानवी देश मिला तो मेगा हर्ट्स पर ये है तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने का श्रोताओ इस कार्यक्रम का जिड़ा सफर है यहाँ बार बार ही बोल देने कि तुहां तक रहता है सफर 2 से 3 बजे तक तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने हम सफर जरूर जड़े से बनी सकते कने अपने जड़ा कामकार हैं सभी जरूर करा क्योंकि कामकार जड़ा सियाँ दे हमेशा चलो रहते पर अपना रेडियो सेट ऑन करा कने अपने जड़ा काम मन सभी जरूर करा सोच उपर हाँ जड़ा गलबात करा देना कि सकारात्मक सोच दे क्या फायदे न सोच तो हर किसी की अपनी अपनी है ना पर हाँ किस प्रकार अपनी सकारात्मक सोच जड़े से रख देना बेहतर मानसिक स्वास्थ्य अगर हाँ क्या सकारात्मक सोच रख देना आहदा जड़ा मानसिक स्वास्थ्य है ना से बेहतर रहता है तनाव चिंता ते मुक्त पर आज कने दौर की अहाँ गल करिए कुथी ना कुथी ये चीज़ अहाँ जो दिखने जो मिलती है क्या हूँ तो हाँ सोचा दे उन्हें कि ये चीज़ तो बाकी भी दिखने जो मिलती है तनाव चिंता टेंशन डिप्रेशन क्योंकि हर कोई ज़्यादातर अपना समय जड़ा से मोबाइल फोन च देता क्योंकि सोशल मीडिया पर अहाँ इतने ज़्यादा बिजी हैं कि थोड़ा दिया अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना ही अहाँ भूली हो थोड़ा दिया मोबाइल फोन जो अगर अहाँ साइड रख देना कने कुछ गल्ला अपनी फैमिली कने कर देना या थोड़ा दिया समय अपना जड़े से अहाँ प्रकृति जो दिन देना या प्रकृति कने बितान देना तो अहाँ कई बार जड़ा प्रकृति का सौंदर्य है ना सभी अहाँ जो सकारात्मक सोच दी ओर लेकर ही जाता है सौंदर्य की ओर जाना भी यहाँ वास्ते जरूरी है सकारात्मक सोच रखना भी यहाँ वास्ते जरूरी है शारीरिक स्वास्थ्य च भी सुधार जड़े से सकारात्मक सोच कने दिखने जो मिलता है लंबी उम्र अगर तो हाँ चाहते ने कि यहाँ दी जड़ा उम्र है से लंबी उम्र तो सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया नकारात्मक जड़ा सोच है उस जो दूर भगाई दिया कि से तो हाँ दे आस पास भी ना भटकी पा कने मजबूत जड़ा हाँ दा सिस्टम है क्योंकि खुश रहने ने तो हर चीज़ अच्छी लगती है अगर हाँ खुश रहन देना हाँ खुद भी खुश रहन देना कने अपनी फैमिली जो भी खुश रख देना तो कुछ ही ना कुछ ही चेहरे दी जड़ा स्माइल है ना से बिल्कुल फीकी नहीं पौंदी है अगर तो हाँ नकारात्मक सोचते हैं ना खुद भी नकारात्मक सोचा देना कने अपनी फैमिली जो भी नकारात्मक वे दी ओर लेकर जा देना तो कुछ ही ना कुछ ही प्रभाव जड़ा से ज़रूर पौंदा है तो हमेशा खुश रहा कने नकारात्मक सोच जो छड़ी दिया अगर अहाँ दिल दी सेहत दी गल कर देना अगर अहाँ सकारात्मक सोच अपने अंदर रख देना तो अहाँ दी जेड़ा दिल दी सेहत है से बिल्कुल ठीक रहती है बीमारियां का जेड़ा खतरा है से कम रहता है अगर अहाँ बीपी दी गल करिए अगर अहाँ ज़्यादा नकारात्मक सोचते न तो नकारात्मक सोचने ने बीपी सीधा क्या होता हाई कने अगर तो हाँ सकारात्मक सोच के कने अपनी फैमिली कने थोड़ा देर समय बितांगे अच्छे विचार तिना कने साझा करगे तो तिना जो भी अच्छा लगता है कने बीमारियों ते भी यहाँ थोड़ी राहत जड़े से जरूर पाते न रिश्तों जड़ा मिठास है से सकारात्मक सोच कने बनी रहती हूँ तुम सोचा दे होने कि रिश्तों मिठास सकारात्मक सोच ने क्या लेना देना है सकारात्मक सोच ने लेना देना तो बड़ा ज़्यादा है अगर अहाँ अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रख दें अच्छे विचार होना हमेशा जरूरी है रिश्तों अच्छे विचार अगर अहाँ रखते न ताई रिश्ते जड़ा से बेहतर बनते न कने अहाँ थोड़ा दिया और अपने कार्यक्रम जो बेहतर बनाते न क्योंकि गीत संगीत तो हाँ सारी इंतज़ार करा दे कि अगली फरमाइश यहाँ तक कालू दिया पुजदी है चला अगली फरमाइश तो हाँ तक पहुँचाई देना इंतज़ार तो हाँ दा बिल्कुल ख़त्म कर देना

0: ਤਾਂ ਸ਼ੋਤਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਤਾ ਨੇ ਸਿਆਹਾਂ ਕਰਨੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਰਦੇ ਤਿਨਾਂ ਕਰਨੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈਲੋ
1: ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ
0: ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਖਨਿਆਰ ਤੇ ਰਾਜ ਬੋਲਾ ਖਨਿਆਰ ਤੇ
0: ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਖਨਿਆਰੇ ਤੇ ਬੋਲਾ ਦੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਸਰ
0: ਜੀ ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ
1: ਖਨਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ ਜੀ
0: ਜੀ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਗੇ ਹੈ ਜੀ
1: ਬਸ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਦੇਖਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ
0: ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਨੋਇਤਾ ਜੀ
1: ਨੋਇਤਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰੀ
0: गाना सुनना है तुह जिंदगी सोनी है जी जरूर तुहदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुंचा दें जी
1: हां जी धन्यवाद जी
0: जी तुहदा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी जुड़ने वास्ते
1: ठीक है हां जी ठीक है जी
0: ए है तुहां सारेयां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने ताशो तो थोड़ा दिया क्या बढ़ते न कन्ने जेड़ा फरमाइश दा दौर है सभी यहाँ पूरा करने कने आज यहाँ जेड़ा गल करा देन से करा देन सोच आंधी जेड़ा सोच है ना से किस प्रकार होना चाहिए क्योंकि ये छोटे छोटे जेड़ा गल्ला ना से यहाँ जो बड़ा सबक जेड़ा है से जरूर दे करी जान दिया ना यहाँ दे जेड़ा शब्द हैं यहाँ किस प्रकार अपने शब्द जेड़ा से रख देन या बोलने ते वेले सो बारी अहां जो सोचना जेड़ा है से जरूर चाहिए कि अहां क्या बोला दे कने क्या अपने जेड़ा विचार हैं से रखा दे तो शो तो चल दे न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा दे न गीते दे बोल हैं जिंदगी सोनी है तो सुन दे नि सा प्यारी दी फरमाइश है जो प्यारी दे गीते जो तुह सारी भी इंजॉय करा

दर्शकों इसकी थी फरमाइश शाह जो आयु वे खन्यारा थी कने तीना दा नावे राज जी तीना तक कहाँ ये गीत भी पहुँचा देना कने तो हाँ सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जिहड़ा समय है से तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। तो जिंदगी तो सोहनी है पर अपने जिहड़ा विचार हैं सोच विचार हैं सब यहाँ जो थोड़े दे सोने रखना चाहिए क्योंकि अगर आपने सोच विचार जालू सोने रखते न अच्छे रखते न सकारात्मक रखते न तो अपनी जिंदगी जो क्या बेहतर बनाई पाते न आहदा जिहड़ा शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य सभी बेहतर रहिंदा है कने हाँ बीमारियां ते मुक्त रहिंदे न तनाव मुक्त रहिंदे न चिंता मुक्त रहिंदे न हर कोई अजकने दौर दी अगर अहां गल करिए तो हमेशा यही चाहता है कि अहां दी जिहड़ा जिंदगी है से थोड़ी देर बेहतर होवे कने हाँ अपनी जिंदगी च हमेशा खुश रहन तो खुश रहने वास्ते थोड़ा देर अपने जिहड़ा सोच विचार है अपनी जिहड़ा सोच है ना से हमेशा सकारात्मक रखा कने अगर तुहां कुसी दी मदद कर देन तभी तुहां जो खुशी जिहड़ा है से महसूस होंदी है पर से यहाँ पर निर्भर करदा है कि यहाँ किस प्रकार अपनी जिहड़ा खुशी है खुशी जो अहां ढूंढदे न अगर अहां प्रकृति की गल करिए तो अगर अहां अपना प्रकृति कने समय बिताते न तो कुछ ना कुछ प्रकृति भी अहां जो बड़ा कुछ सिखाई करी जाती है ये झरने ये नदियाँ अहां जो हमेशा ये बोल दिया न कि मेरी जरा रक्षा है से जरूर करा क्योंकि अहां ये चीज़ कुछ ना कुछ जरा से भूलते चलो तो श्रोताओं अपना ख्याल भी रखा कने अपने का ख्याल भी रखा कने तो हाँ

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए, कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है।
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवा तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे हैं विकास और आप कह रहे हैं प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है।

0: जनगणना हमारा विकास।
1: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
2: वैसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
3: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
2: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए। फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। फिर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
3: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
2: हो गया, क्या हो गया?

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत था, आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए, कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है,
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: कैसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हो गया, देखो क्या हो गया।

0: नमस्कार श्रोतो, FM 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर बचुआ हक नो एपिसोड लेकर इंदी हपड़ी गप्पा। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है सभी हुन्ने वाले रा, सभी श्रोतागण रा। क्या हाल चाल तुंदे? उम्मीद करनो खरे बुनेन और तो सब कुशल मंगल बुने अपने अपने घर है, हस्त पुष्ट और तंदुरुस्त खुश। खुश रहना जरूरी है श्रोतो। आखिरकार लाइफ सब भी विकिया, सो स्ट्रगल फॉर ला, हर किसी भी जिंदगी में किया है, सो स्ट्रगल हार्श होता हूँ, लेकिन एट लास्ट एक ही तो है कि घर खुश रह सकते हैं, जो किया है हमेशा बोलते हैं, है ना। तो राम राम जी, बिल्कुल राम राम जी। व्हाट्सएप माफ करा, हाँ व्हाट्सएप में किया सो सिम मैसेज आसू राम राम जी। चलिए सभी और राम राम जी, और जितने भी श्रोता सू हूँ कर दिन सभी जो जी तहे दिल तो राम राम। तो सब श्रोता सू की कनेक्ट हो सकते हैं 7088879 पर। नंबर अक मौके फिर तू हो गया है, शेयर कर देना 7088879 पर। तो इनके पहले श्रोता हसू की कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दें श्रोतों और पूछ दिन कुन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू कर दें हिंद। और इसी सो की श्रोतों आजकल चुनाव चल रहे थे, तेरी गलबात भी ऐसे है पता तू होगी जरूर कर दिन, कजो कि तू इन श्रोतागण ने इन परिवार इन टब्बर आ तो जरूर कर दिन। बहरहाल इन श्रोता सूगी कनेक्टेड है। नमस्ते जी।
1: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, ठीक ठाक न?
1: हाँ जी सर जी, ठीक ठाक जी।
0: और राजीबा जी?
1: राजीबा जी सर जी।
0: जान तबीयत ठीक है तुंदी जी?
1: हाँ जी सर जी, ठीक है सर जी।
0: चलिए ठीक है जी। और कुंडे ने की थोड़ा पसंद कर ले पहले तो दस दिया जी।
1: ईशांत, ईशांत भारद्वाज जी का सर जी एक नाटी नकारी है, मिक्स है सर जी, मैं चली नाटी है नवा गाना सर जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: सही सुनवाई ने सर जी।
0: चलिए ठीक है जी, जरूर सुन ले।
1: हाँ जी सर जी, धन्यवाद सर जी।
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते,
0: धन्यवाद धन्यवाद। चलिए श्रोतो, अगले श्रोता सूगी कनेक्टेड हैं FM बैंड 91.2 MHz पर। धर्मशाला में IPL रिडेट फाइनल बड़े टाइमर ही बहुत छोरे थे, लेकिन तो सुदस इंदन की 800 जवान के सो लगभग 800 जवान ना किया सो संभालना सुरक्षा रही कमान श्रोतो जी। बिल्कुल मैच दौरान किया सो ट्रैफिक भी सुचारू रूप थो चलने हैं, शहर में 800 जवान किया हो सकता 800 तो ज़्यादा वो जवान की तीनिया मोर्चा संभालना है श्रोतो, है ना। और स्टेडियम जो 4 सेक्टर में किया सो बनना है। IPL मैच 11 मई तो हिंद धर्मकोट में ठहरने है मुंबई इंडियंस री टीम श्रोतो जी। बिल्कुल, और फिलहाल इन द्रोतगाना सोगी कनेक्टेड हिंद उस दिन कुंड बल्लू दिन। नमस्ते जी।
2: हेलो।
0: हेलो, नमस्कार जी।
2: हाँ जी नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे और कड़ी तो बोल रहे
2: हैं? संजय बोल करता उपरा कुटू ही हूँ।
0: खुलू ही तो पंडित जी।
2: हाँ जी,
0: क्या नाम दसो तो है अपना जी?
2: कुटू ही बोलू खुने आला कुटू ही।
0: हाँ जी हाँ जी, ना के दसो तो है अपना?
2: संजय लोहार।
0: संजय लोहार।
2: हाँ जी।
0: अच्छा, और संजय जी कर लगुरन क्या है लगुरा कमाना?
2: बात तो ब्याह हो रही है ना लगुरे।
0: अच्छा, कदे गो संजय जी आज कना दिन तुंदा?
2: ठीक रहे हो जी।
0: अच्छा, चुनाव जो लेकर क्या बोलना चाहते हैं?
2: चुनाव जी क्या बोलना चाहते हैं, आज के बंदे फार्म भराई कर आए ना।
0: अच्छा।
2: हाँ जी जी।
0: अच्छा, तो है भी खड़ू है ना?
2: ना ना, मेरा भाई घर हुआ।
0: अच्छा, कस पद वास्ते खड़ रहे जी?
2: ए जी चावन दे कटोई हैं जी, कटोई।
0: ना ना, क्या प्रधान उप प्रधान BDC मेंबर? ना
2: पंच है, पंच।
0: अच्छा,
2: हां जी हां जी।
0: चले ठीक है जी, ठीक है। ता नोइता जी और कुछ?
2: और कोई ना नोइता जी, बस मोनो कल कर लंदे आज पर दीवाने उसी गल करूंगा।
0: हां जी हां जी। तो बिल्कुल, तो ये जमाने पता ना को कर दे तो तुम अपना गादा कार्यक्रम है ना, इसी तो इतिया तो है चूड़ पांच रोजाना कॉल कर सकते या हफ्ते बाद करा जुड़ाव रखा अपने इस कार्यक्रम सोगी।
2: हाँ जी हाँ जी।
0: चलिए ठीक
2: और
0: है,
2: क्या क्या सुन रहा, ठीक है ना?
0: है बिल्कुल ठीक ने जी। राजीव बाजी ने भगवान रा आशीर्वाद आ, माता रानी रा आशीर्वाद आ,
2: चलो
0: परिवार
2: ठीक
0: वाले
2: है।
0: रा
2: हाँ
0: आशीर्वाद आ, तुंदा सभी रा आशीर्वाद आ
2: जी।
0: जी।
2: हाँ
0: कुंडली की थोड़ा पसंद कर ले जी।
2: मोहना बन्नी माता, बन्नी
0: जी बन्नी माता,
2: माता का होना भजन।
0: बन्नी माता रा भजन होना।
2: हाँ जी, हाँ जी,
0: अच्छा, ठीक है जी, जरूर होना ले तुसु।
2: ठीक है जी। बहुत धन्यवाद तुम्हारा।
0: तुंदा भी धन्यवाद है जी अपने इस कार्यक्रम सोगी कनेक्ट होने वास्ते
2: चलो ठीक है जी।
0: जी। श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम है हिंदी अपनी गप्पा के अंसो तो सब हूँ कर दे हिन ता तो सब श्रोता भी कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के सो भी उन्हें सकते हैं श्रोतों। ता चलिए फिलहाल ता है चलते हैं थोड़ा करी और हगूँ और तो सब ये दस इंदे कि इस समय किया सो 18 डिग्री रे आसपास किया सो टेम्परेचर हा, 18 डिग्री रे आसपास किया सो टेम्परेचर हा इस समय श्रोतों, 18 तो 20 डिग्री रे आसपास किया सो टेम्परेचर हा। और ना मेरी गल करूँ जतियों अंग्रेजी अंदर ह्यूमिडिटी है बल्दे हिन श्रोतों ता ह्यूमिडिटी तो वो पता जाने गर्मी बहुत है तेने थोड़ी करी किया सो घट बुझ गंदी है कि ज़्यादा बुझ गंदी है दसा। इस समय ह्यूमिडिटी की है सो 68% है श्रोतों। तैयार जी आगाज कर लेंदेन कार्यक्रम रा, आगाज बिल्कुल ईशान भारद्वाज नौ गीतरी फरमाइश आए ज़रूर है उन ले इंदे भाई बहुत ही इंदे रेगुलर लिसनर हैं लेकिन आई होप कि भाई भी ना बुरा मन ले है गल्ला जो कजो कि आगाज किया सो माता रानी रे भजना थो बूना चिंता हा और शो तो बोलते ने कि रिश्ते के सो निभाने थो निभ देन और गलबात करने थो किया सो रिश्ते निभाए गंदे हिन। फिलहाल आगाज कर दिन कार्यक्रम रे इस गीता सोगी

0: इस गीतरा आनंद की इस वसु जरूर लेना है माता रानी रे भजना सोगी इस गीतरा आनंद की इस जरूर लेना है शो तो सब बन रहे इस समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्स पर रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगी इन दैगले श्रोता आसोगी बिल्कुल कनेक्टेड हिन और दौड़ चल रहा है इस वक्त बिल्कुल धर्मशाला में दौड़ चल रहा है श्रोताओं सब अपना अपना जोर आजमाइश किया सो करू करते हैं सब अपनी अपनी जगह किया सो जरूर ये चाहो करते हैं कि अह जितना लेकिन जनता जनार्दन हा और जनता बड़ी आजकल के सो समझदार बहुत छो रही है सो जनता ना रे रे कि चलो भाई इन ये बलिता था सेरे बलने पर किया सो इसी वोट पाई दिन दिन और इस वोटरी कीमत की सो भी तो है जाना बहुत मूल्यवान है वोट तो सुबह से श्रोता हूँ बहरहाल इन श्रोता करना सोगे कनेक्टेड है नमस्ते जी
1: हेलो नमस्ते भाई
0: नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक ना
1: हाँ जी तो ठीक है ना
0: हाँ जी बढ़िया जी बढ़िया
1: सुमन बल्लूंदे दाढ़ी
0: जी सुमन जी दाढ़ी में बल्लूंदे ठीक ना दाढ़ी वाला है
1: जी ठीक है
0: और वोट चले आए था क्या वोट जो लेकर तुंदा विचार
1: वोट चले आए ना वोट तारे खड़ी सूरे
0: इच्छु कर दें करे
1: हाँ जी
0: अच्छा और करे लग रहे हैं
1: आह लग रहा अपनी ड्यूटी बकरी चार उन्दे खड़ा
0: अच्छा
1: दाने होने उन्दे
0: अच्छा
1: और
0: तो है
1: ताजी बहुत तारी है आजकल
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत तारी नई ताजी है ता क्या लगू कर दा जी तुसु क्या उम्मीद है कसकना
1: जाने तो वे कसकना री लहर चल रही है वे लिरिक तो थोड़ा आए ही है ना
0: हाँ जी
1: शुरुआत ही है ना ली इधर थोड़ा होना ताई
0: अच्छा
1: चलने लहर अक्की दिन जी होंगे
0: बिल्कुल
1: लगना पता
0: एग्जैक्टली तहने लगना पता
1: रातों रात ही बदल गए बड़ो
0: बिल्कुल रातों रात ही जलबंदी गेम है ना जी
1: चलो खड़ी हुई रह जाए जितना जिया रहना तिया रहना है ना
0: रहना बिल्कुल बिल्कुल
1: तो गाना सुनाएंगे तो धर्मा मेरे राजिया
0: आहा क्या बात है धर्मा मेरे राजिया तेरी लग दी के चेहरी हो
1: हाँ जी
0: बिल्कुल इस गीता जो हुन ले है और कुछ नोईता जी जिंदगी खरी चल रही तुंदी
1: हाँ जी खरी चल रही ना चलो टाइम निकलूंगा
0: बिल्कुल बस टाइम निकलना चाहिंदा
1: ए जमाने जे या टाइम निकलदा रे बस दो ही वक्त ही रोटी मिलदी रे या इच्छा होगी
0: हां जी
1: ओ या
0: बस ए हां जी चलिए जी जरूर तुसको गीत सुन ले जी जो तो दसो
1: धन्यवाद
0: जी एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगेन सो लाइव चल रही है इस वक्त रेडी गुंजन धर्मशाला मंच तो हम तो सुगर दो मुंबई इंडियंस की टीम के सो मैकलोडगंज धर्मकोट स्थित निजी होटल में गया सो ठहरने और अखने सेक्टर बनाए कर व्यवस्था करेगी कि स्टेडियम सुरक्षा जो चारों सेक्टर थो किया सो रखी गो हा मतलब चारों साइड के ना सो रखे गए हैं और पुलिस री औरतों के सो पूरा बरहाल लेंदा अगले श्रोता कनेक्टेड हैं पुस्तन कौन बोल लूँ देन नमस्ते जी
2: नमस्कार जी
0: नमस्कार जी नमस्कार
2: और
0: बढ़िया जी बढ़िया कौन बोल लूँ देन और कड़ी थों बोल लूँ देन जरा
2: आओ थात्री बोलूँगा
0: थात्री हूँ क्या ना जी तुंदा ज्ञानचंद जी आज तो मौसम भी खराब हो सब कुछ खराब हो आज भी तोड़े छुट्टी कर लिया
2: ना ना भाई चौर
0: हाँ जी
2: हेलो
0: हेलो हेलो हाँ जी
2: मैंने चौर बज गई
0: अच्छा 4 बज गए।
2: आओ चौथ ऊपर बजी को टाइम।
0: अच्छा 4 रुपये छुट्टी कर लेन देन तो है।
2: करते छुट्टी है,
0: अच्छा जी ज्ञान
2: मैं
0: में।
2: पहले पांच बजे करते ही हम
0: अच्छा आजकल चोर।
2: 4 रुपए करी तो टाइम हो।
0: ठीक है जी। कुंद ने गीत थोड़ा तुसु
2: बाजना हाई दिया गुणा मंदिर का कोई आज बढ़िया दिया।
0: गुणा माता दा।
2: हाँ जी हाँ जी ठीक
0: चलिए ठीक है जी, जरूर होना ले दूसू।
2: है जी, धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद। सो तो सब भी रिकॉल अगेन, सो जरूर रसू, जरूर जरूर रसू के ना सो पूरी करनी। लेकिन आइए भजन रा आगाज जो छोड़ो अगला गीत अगले बोल के ना सो हूं देने सुभाष कौशल री आवाज में गीत।

0: पूरी जरूर भूनी हिन। और इसी बीच मैसेज रे जरिए के ने सो चूर बजे सुरेश मर्दान जी री की सो फरमाइश छोरे थे कि जांतरा कुड़मनुआ गीत किया सो हुनना हा सुरेश मर्दान इंद है बेसिकली सब जानते हुए कि दारनू रे निवासी न कजो कि दारनू इंदी मासी रे घर तो इंद मासड़ी लगे और रेगुलर श्रोतागण इस कार्यक्रम रे और रेगुलर इस कार्यक्रम जो कि आ सो हुन दे भी हिन ता चली जी तुंदी फरमाइश की सो भी असू जरूर पूरे करने हैं। और एक कुड़मनु वाला कुड़मेक कुड़मेट ये सब रिश्ते अगेन सो बड़ा ही श्रोताओं दसना चाहता कि संजोई करेगी ऐसो रखने पैंते हैं बड़े ही संभाली करेगी ऐसो रखने पैंते हैं रिश्ता कोई भी बहुत श्रोताओं बड़ा ही प्यारा होगी फुल्ला ही है कि ऐसा संजोई करी रखना चाहता संभाली करेगी ऐसो रखना चाहता। और अक्सर यह बल देना कि हत्ता जो कि ऐसो हाथ बुंदा हा और यही है श्रोताओं जिंदगी में और कुछ ना लेकर गाना जने असू गाना तो सिर्फ और सिर्फ इन कर्म के न सो असू सोगी गाने यह कड़ी अच्छे कर्म करू रहे न कड़ी यह कसकी अच्छा करू रहा सो कर्म लिखिंदे और सो सोगी गंदे हैं बाकी ता ये सब मोह माया है शोतों जिंदगी में छा ना कर्म बेहतरीन करने वास्ते असू अच्छे काम की असो करना पैने जो कि बिल्कुल जाहिर दे गल हा। और इस समय इंदे बहुत सारे इवन की इंदे मासी मासड़ इंदी बहन की असो भी कणका लग रही है पढ़ना और बिल्कुल कणका लग रही है पढ़ना और भी बहुत सारे इंदे श्रोतागण सो कणका लग रहे हुए इस वक्त की असो पढ़ना है ना बहुत सारे की बहुत सारे श्रोतागण। चलिए जी अंबर थोड़ा करी दंदा साथ की सो जरूर दिछुंदा और इस साथ भी जरूर देना दंदा सबीरा आऊँ बहरहाल तुसु दसी भी दिनों हाँ कि अवे किया सो इस हफ्ते किया सो अंबर साफ या दुत्ते भी किया सो ठीक ठाक धुप के सो रहने या प्रोई भी आई थिंक संडे जो भी किया सो धुप रहने हाँ शो तो है ना तो अवे धुप या थोड़ा करे बदल हो सकता ट्यूजडे तक सो मंगलवार तक है ना फिर धुप धुप या ता तुआरे तक अगर तू है इन हाँ तो सुबह फुर्ती तो तुआरे तक तू है गाई गुई कर गया सुबेले बुझ सकते हैं ता बहरहाल कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा हूँ कर दें तो सब हिंदे श्रोतागण असूगी कनेक्टेड थी या माफ़ करा ध्यान थोड़ी इस पास तू तो तुम सब कनेक्ट हो सकते हैं जी जरूर 7081 8871 709 पर कॉल करी करी है ना जी। चुनावी वेला हा चुनाव रहा माहौल बन रहा हा सब पास है और फिलहाल इन अगले श्रोता असूगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते नमस्ते भाई सचिन जी।
0: नमस्ते भाई सचिन जी और सचिन जी तुम्हारा नमस्कार स्वीकार करता जी। बहुत बढ़िया जी तुंदा फोन चलिया तो और भी खराब पूछी कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन
1: कंडी हूं बोलो
0: दे अच्छा कंडी थों कौन बोलूं देन जी
1: स्वीटी बोलूं दे कंडी हूं
0: स्वीटी
1: हां जी
0: क्या बात है बड़ा प्यारा ना तुंदा
1: हां जी थैंक यू जी
0: जी स्वीटी जी क्या कर देन तो है
1: आओ हाउस वाइफ आते स्टिचिंग का काम कर दिया
0: क्या बात है स्टिचिंग का काम बड़ा ही बेहतरीन काम बुंदा और अच्छा अक जो टेलर बुंदा तेरी कितनी करी क्षमता बुंदे सो अक्की दिना कितना करी सूट के सो सिली सकदा
1: अपनी मर्जी हुंदी है
0: मतलब आ
1: तो मर्जी माल का मतलब दिल वालना तो सीने ना वालना तो ना सीने
0: ना दिल तो ही पार मेरा भी बल्लू करता तो क्या हम भी चलेगा छुपर सो ना दिल अरी गल तो ना मायने रख दिया अक मायने रख दे कि चलो सो तो ठीक बल्ले की दिल अरी गल लेकिन अक मतलब क्षमता हूँ पूछूंदा अगर मुंजो कोई पूछा कि हाँ कार जी कितनी क्षमता बुंदे बलने रही तो दस ही सकता कि हाँ अकार जी की असो दो घंटा बल्ले सकता या अक घंटा बल्ले सकता हा या त्राई घंटे ती हाँ कि कितनी करी अक्की दिन अंदर दो ही सूट त्राई सूट सिंपल
1: जी हाँ जी दो ही या त्राई सूट तक करके दिलता मैक्सिमम बंदा
0: अच्छा दो या त्राई सूट चलिए तुंदा ना बहुत मुझे यूनिक लगो है स्वीटी हाँ जी तुंदे पेरेंट है बड़ा प्यारा ना रख रहा तुंदा तो ये दसो तो है कंडी रे रहने आ रहे हैं ना जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: माइक के कड़ी इन तुंदे जी
1: माइक के खने आ रहे हैं
0: खने आ रहे रेडे रेडे कर लियो बे
1: हाँ जी चल लो रही
0: अच्छा टिल्लू है, क्या बात है, तो ठीक है फैटी फैटी डोल है ना जी।
1: हाँ जी 5 किलोमीटर अंदर कर लूँगा बैठ है।
0: बस तो बैगा वो कर दे बुने ते माइके की चिवन दे बुने और है ना।
1: हाँ जी
0: ब्रेकफास्ट तड़ी करेंगे ते लंच रहे टाइम में चली इंदे बुने कन्यारे जो
1: ब्याह है तो चली गंदे ना जूली पटोले तक चली गंदे मॉर्निंग वॉक करना तो तू कितनी के दूर है रे।
0: चलिए थोड़ी घरी और क्षमता रखा था तो तू घरे पूछ के छू करना अपने।
1: जी रोज रोज माइक के ठीक ना अंदर का ना।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बल्लू कर दे तो है। रोज रोज करिए बेगा ठीक ना बंदा अपने घरे छड़ी करे। अच्छा स्वीटी सी कुंदने की थोड़ा पसंद कर ले
1: वो गाना हो ना अग लगे टेंशन नू।
0: तो ज्यादा टेंशन तो नहीं ले रही है सूटा रे।
1: हाँ जी
0: मिले तो है ज्यादा टेंशन तो ना ले रही है सूटा रे। जरूर हुन ले जिंदगी सोनी।
1: बिल्कुल
0: ठीक है जी धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही इन शोतों तैयार बहरहाल इन और भी बहुत सारे श्रोता के सो कॉल करू कर दे हिन लेकिन धीरे धीरे अब फरमाइश दौर के सो पूरा कर दे चलते हैं सभी फरमाइश पूरी कर ले लेकिन आइए पहले इन सुरेश मरथान जी जिन्हें चूर बजे मैसेज करू रहा और जो मतलब कणका बढ़ने लग रहे कमे लग रहे तो कमा वाले भी किस बड़ी वैल्यू होंगे है ना। तो सब कमे लग रहे बुने लेकिन यार मैसेज चूर बजे छूरत आई है जी कुड़मनुआ गीत रे बोल ना तो ये गीत इन्हें जरूर होने दिन बनी रहे तो ये सब वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी आइए सुरेश जी सोगी सोगी फराटी भी लाई लेंदे कुड़मा सोगी तो पता ना कहने लानी तुस फराटी लेकिन फिलहाल है लाई लेंदे ना ना कुड़मा होगी ना शौक तुसू मुझे लगता कुड़मने रे लग रहे।

0: FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को ट्रोर है कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगेन सोशल रेन तो इस कार्यक्रम मंच तो है सब श्रोता बिल्कुल लाइव जुड़ सकते हैं नंबर है तू होगे साझा करे हैं तो चलिए जी अगले श्रोता जो कनेक्ट कर दें तो सब भी कनेक्ट हो सकते हैं फिलहाल नमस्ते जी।
1: नमस्कार महाराज जी।
0: हाँ जी महाराज नमस्ते।
1: जनाब ठीक ठाक ने?
0: बढ़िया जी ऊपर वाले रा आशीर्वाद दा
1: लास मालिक ने मौज होना चंदे महाराज जी।
0: मालिक की मौज मत है ना है रे मालिक के बगैर तो अकपत्ता भी ना हिलदा है ना।
1: बिल्कुल महाराज 24 घंटे से मालिक की मौज बन जी रहन ता खुशी रहन दिया।
0: और इंसान अपने में बड़ा घमंड करता जी मैं ये करे कर लू मैं इतनी करे कर लू लेकिन इंसान जो शायद है गल्ला तो इंसान वाकिफ नहीं है कि इंसान ठीक है सो करू करता लेकिन उस रब रे मर्जी रे बगैर गया सो इंसान कुछ भी नहीं।
1: बिल्कुल जी।
0: और ना सो कुछ कर ही सकता मेरे हिसाब हो गया था।
1: हाँ जी हाँ जी है ना। कई कई मन ये घमंड बड़े होंगे ना।
0: चलिए बोल देना कि जो घमंड जो एटीट्यूड जो अहंकार सो सब अग दिन की असो मिट्टी में मिले गंदा जी असो सब भी की असो राख ही बढ़ना एट लास्ट बोल देना कि कसकी हो रही रहा चमड़ा वो ना तो सो कम में भी चली इंदा मनु रहा था सो भी नहीं इंदा है बाकी कभी दूर बच गया
1: आक बाजे ना ना बाजे ना।
0: हाँ जी
1: बंद है ना पशुमा दे आड़ बिक गए तेरा चमन किसे कम नहीं आना पशु दे आड़ बिकी गए ना तो इंसान दा कुछ चीज कम नहीं दे
0: ना इंदे ना इंदे
1: तो अहंकार भी कहे करना जेड़ी चीज दितु है परमात्मा हो दे दितु दे या
0: ना इंसान ना जिंदे जिंदे ना जिंदे जी कस की रकम में सकदा ना मरे करी कस की रकम में सकदा।
1: बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी
0: ये हकीकत है।
1: हां जी
0: जी बोलते ना इंसान सो ही अच्छा जो अपनी परवाह करा परिवार रे करा परिवार रे सदस्य रे करा और अपने दोस्त रे करा और समाज रे हित रे बारे में बेकिया सो जरूर सोचा है ना।
1: हां जी हां जी बिल्कुल बिल्कुल जी
0: जी
1: हां जी। और जनाब आज मैं एक गाना सुनना
0: जी जी
1: आज मैं आओ क्या हुआ मेरे असरा बोलूंगा माता मत पीन
0: तो बहन दिल के ज्यादा पियो कर देती है।
1: ओ महाराज जी पीने वाली गाली मत पूछा।
0: अबे रना अगर बे अंदर शराब ना पियाई मतलब वैसे है डी एडिक्शन इन द सेंटर चल रहे हैं और इसी पर काम भी करते हैं लेकिन अक बड़ी जनरल दी हूं गल जल्लू करदा जे अगर बे अंदर मन नहीं ले गया है शराब ना पियाया है ना फॉर एग्जाम्पल तब मनु के बलना की कदे बे आजकल मनु ये भ्रम बुछूरा कि मनु के बलना की कदे बे लेकिन अगर तू है दो त्राई पेटी खोली थी और शराब पियाई तो मतलब वाह क्या बढ़िया फंक्शन हुआ लाजवाब बैब हुआ।
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
0: और मतलब अबे तो इतना ट्रेंड बुचूरा वैसे है ऑक्साइड बोलता कि नशा छोड़ो ता ही ताऊ तू ये रुपए मुनाओ कभी भी ये ना बोलता कि शराब छोड़ो कुछ क्योंकि मुझे पता है बंद होने नहीं है ना
1: ना होनी जी ना होनी
0: ठीक है। और सरकार भी चालू कर दी नीति थे और
1: चालू
0: करता है ताऊ हमेशा ये बोलता कि सुखे नशे बंद करा कि चलो आ रहा शराब पी ले जड़े को पी लिया ਬੇਗਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਚਿਗੰਦਾ ਔਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਬੰਦੇ ਆ ਸੋ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਕਸ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿ ਆ ਸੋ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਓਵਰ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਯੁਵਾ ਕਿਆ ਨਾ ਸੋ ਮਰ ਗਏ ਨਾ
1: ਮਰੀ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨਮਕ ਹੋਗੀ ਸੋ ਪੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ
0: ਖਰਾਬ
1: ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬਿਗੜਨਾ ਨਾ
0: ਦਿੱਕਤ बिल्कुल बुरा लगता, लेकिन इसी तो है बंद ना कर सकते,
1: ना कर सकते
0: नहीं बनूंदा, इसी तो है यह है बंद ना कर सकते
1: नहीं जी।
0: और तो है आके फंक्शन कोई कट दे अपने घर अंदर बगैर शराबे, फिर हेरा मनु की तुम्हें चर्चा करनी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: है ना। और मां बहादुरी भी समझ दे मनु की शराब पियाए तो सो बहादुर है जी, है खाओ पिया हुआ
1: नहीं, नहीं चलो पीने वाली चीज है ना पिया, पर पिया तुमने ये इंसान जो पता रहे कि हम उस रास्ते चल दो, तुम इस रास्ते अपने घर पुजी गए ना।
0: बाकी मैं
1: हाँ तो तू नहीं पी जानी जे रास्ते पे गए तो मनु तीन तीन पर बना फलाने का बंदा पिया तो शर्म किसी होंगी है, सारे होंगी है शर्म।
0: बिल्कुल बिल्कुल ये गल तो बिल्कुल सही है,
1: लत मारी सो त्रीजे रोजे खत्म छो।
0: ओहो
1: तू ना शराब पी रख दो, फिर मैं पता कर बोले लूने ने पीती है शराब, बोले कि पीती है त्रै बोतल कट्ठी पी लिया, बोले
0: लिखा
1: बोला तिना दिन तूने जे 8 घंटे अंदर बोले त्रै बोतल पीती नहीं है तो दस कैसे रहना हो। चलो पीने वाली शराब पींदे दिन ना पींदे वाले ना पींदे है ना, कहते कश्य पीजा चाहे ना पीजा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि अपना आप जो मारना क्या सो ठीक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: दुबे चलो आ है ना कनंदिया जे पिया चाहे ना पिया, आ है तो असंदे घरे दिन दिन ना दास भगवान जे महाराज जे तू सुसरा पीना डोल पिया तो सो ये था आज पंदे घरे इंदे न थे।
0: हां जी
1: इंदे घरे शराब इंदे न थे।
0: अच्छा
1: ले चिंगे पहले बंदा है कोई ये ब्याह भी आ है, आ है चिंगे पहले बंदे के शराब पीने ला तो अपने घरे पी करी ने डोल खाना खाए आज चल गया चल रहा ही झगड़ा ना करना तो ठीक ना लगता ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ जी।
0: और शराब तो मतलब आऊं हमेशा गिरंदा भी नहीं मायने बिना रखता है, जो आजकल हरदेव जी जस प्रकार रहे ये हुक्के नशे चल रहे ना, जस गांजा फीम है ना थानी, ओहो मतलब न जाने कितने ऐसे नशे इनकी मतलब शराब भी रहता लग गंदा पता की नहीं है शराब पियो रहे ना, तेरा लगता भी नहीं पता कि नहीं ये सुक्का नशा कर रहा
1: ना लगता जी पता
0: ना लगता पता। और हृदय हृदय सो इंसान बहुत एडिक्ट एडिक्शन में किया सो पेगंदा।
1: हाँ जी पेगंदा ये
0: ठीक है जनाब जी, तो जरूर होने ले तो सुगीत
1: ठीक है महाराज जी।
0: जी इजाजत। FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा, और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पी गप्पा गया ना सो चल रही इन तुंदे सभी रे रेडियो सेट में तो आइए शो तो चल दें हगू। और ईशान भारद्वाज श्री गीता री फरमाइश थी 9 गीत निकल रहा, आइए हूँ दिन एक गीत तुंदे रेडियो सेट में बनी रही आरजे सचिन।

जी बिल्कुल श्रोताओं, एक कहानी आकर राजा री जिसकी सपने माँ के अख महात्मे दर्शन दिते और बोलू तेरी मृत्यु की आस वक नागा द्वारा बोणी हाँ। राजा थोड़ा करी परेशान अपनी मौत होने करी कुन ना भला परेशान वो आना और ये जैसू वो पता लग गया कि हाँ महीने बाद इनकी मौत आया दो दिन बाद इनकी मौत है तो इंसान अपनी जिंदगी ना जी लिया खरी कीता है इंजा उलझना मा इंजा टेंशन ना था थोड़ा करे बेखौफ बुझ करे अपनी जिंदगी री और ध्यान दिया और अपनी जिंदगी जी लिया है ना। तो राजा भी परेशान बुआ और राजा भी थोड़ा करे हताश बुआ कि अच्छा मेरी मृत्यु हा कारण पूछू महात्मा था तो बल्लू जी पिछले जन्मारा कोई बदला लेना हा पिछले जन्मा कुछ बछूरत हो तो सो बदला लेना हा। महात्मा बल्लू तो इनिये राजे की ऐसो अपने मंत्री मुंत्री हो दसो तिन्या भी कोई विद्वान की ऐसो पूछू तिन्या बल्लू जी ये बिल्कुल अटल सत्य राजा री की ऐसो दो दिन बाद मृत्यु जरूर बुने और तस नागा द्वारा बुने और सो नाग किया सो सामने जो तुंदा पीपल रा पेड़ तड़ी बेखुरा बुना तड़ी बुना हा। और राजा चिंतित हुआ प्रजा चिंतित हुए राजा रे सैनिका की ऐसो बल्लू राजा जी तो है को चिंतित चिंता अंदर प्यो कर देन तो है को चिंतित बुच्छू कर देन तो है हुक्म दिया तो है तस पेड़ हो गया सो बढ़ दिन और तस नाग हो गया सो मारी दिन देन खत्म करी दिन देन। राजा बिल्कुल इनकार करो है गलत हूँ कि ना अब तसो पहले वह दुश्मन है और मैं मारी करी अगले जन्म फिर आऊँ तसी दुश्मन बना लो। राजे थोड़ी देर सोचा अंदर पियो और राजा बलिता की तो है ये करा कि पूरा सेरे पीपल रे पेड़ों लेकर और मेरे मंजे तक किया सो पूरा रास्ता गया फुल्ला हो गया सो सजाए दिया इत्र किया सो छिड़की दिया साइड अंदर बड़े बड़े घड़े किया सो दूध रह गया सो रख दिया। राजा जी ने हुक्म दिता जो हुक्म दिता था सो हुक्म अनुसार किया सो कम बुझिगो ते फुल सज गए सिरे पेड़ थो लेकर राजे रे रूम तक जी मोत्रा अक मतलब राजे पता था कि मेरी मौत आ लेकिन राजे बोलो कि अब मौत ही आता फिर आऊँ को मतलब बंदा ने आखिरी इच्छा कि चलो जी ये मेरी आखिरी इच्छा है कर दिया पूरी सोई थी कि सो पहले दुश्मन आता तसी और दुश्मन को मनाना कजो कि इस जन्म में कि जो राजे रा व्यवहार किया सो अच्छा तो होता हूँ पिछले जन्म में तो न जाने की ना तो लेकिन इस जन्म में राजे रा व्यवहार किया सो बढ़िया तो अच्छा तो ता तिनी इस जन्म ही कर बोलो ही करी कर दिया ता तीय बुझ गो और नाग निकलो नागे रो की वाजी वाह फुल्ली फुल बरसुरे मतलब रखु रहे न और इतर इतरा एरा और अपा दुद्धरे घड़े न नाग चलता गो खरा मोटा नाग चलता गो और राजे रे पिंदा दुद्धा पिंदा पिंदा सब कुछ करी कुरी करेगी ऐसा बिस्तरेंगी थी बखो। और राजे तो सवाल करूँ कि राजा जी तुसु तो पता तो कि आऊँ तुमने मौत मणि करेगी ऐसो इच्छू करदा लेकिन फिर भी तो है कि सो इस प्रकार होगी मेरा स्वागत करो हा इस प्रकार होगी मुंजो इड़ी तक पजाओ हा तो है चाहते थे मुंजो मारी भी सकते थी जो कि तो शक्तिशाली थी और तुसु है तुसु जो महात्मा किया सो दसीता तो दर्शन दे करेगी तुमने मौत आ फिर भी कहो। राजे बड़े प्यारा उत्तर दिता श्रोतों कि नागराज जी आऊँ चाहता था ये सब कुछ कर ही सकता तो लेकिन मैं ता ना करूँ कजू कि मुझे मेरे जो पिछले जन्म रहे बुरे कर्म थी टेरा नतीजा किया सो आज मुझो पश्चाताप करने रह किया सो मौका तो और चलो इस जन्मा में जो खरक मूरा सो मुझो इस जन्मा भी मुड़ुआ हूँ राजा था इस जन्मा भी किया सो मुड़ुआ और वो सकता कि अगले में मुड़ा तो चाहता था ख़त्म कर ही सकता तो लेकिन मैं ऐसा ना करूँ। नाग देवता जी की असो बड़े प्रसन्न हुए है गल्ला होने करे बड़े तिन्या प्यारा और तिन्या बोलो कि तुंदा ये व्यवहार है री करी तुंदी ये गल होने करी कि असम बड़ा खुश हुआ और अपना विचार की असो बदलता आऊँ चली पेंदा इडियो। राजा खुश पूरी प्रजा खुश मंत्री खुश सब कहने सो बहुत खुश हुआ है सोतो कजो कि धर्मा खेरे
सो कचहरी के ने सो जरूर लग दी इन शो तो जो असु गीत होना आवे कि धर्मा खेरी कचहरी जरूर लग दी ना, लेकिन इंसान रा व्यवहार ही इंसान री सभी मोटी ताकत था, इंसान रा चरित्र ही इंसान री सभी मोटी ताकत था, इंसान री बोली किया सो इंसान री सभी वड्डी किया सो ताकत था। सो सियाने बलने ना कि यही जीव किया सो रेडे है और यही जीव किया सो दूरा, कसकी होगी मिठा बुची करी बल्ल मिठास भरा बल्ल है ततस तुसू तय उम्र किया सो याद रखना हा, और गस की होगी तो है ऊंची आवाज़ में गल कर ले या हम कर करे गल कर ले या एटीट्यूड सोगी गल कर ले या अहंकार सोगी गल कर ले तो सो इंसान भी तुस होगी किया सोती है तुस होगी जवाब देना तस भी और पल भर में किया सो तुसको बोलेगा ना तस और तुस शायद तुंदी शक्ल हेरना भी इनकी शक्ल हेरना भी किया सो इंसान दुआली पसंद ना करे कि यार इस मनु हो गए बंदा ना कोई खड़ूस ही ना खड़ंग ही ना मनु बंदा तो दस यू ही बलदे सब यार सिरे मुँह में ना लगना ना ना ना इस क्यों किया सो अगर ये बत्ते चल रहे तो है दुई बत्ते निकले गंदे ना। सो आज भी बूणा कर खा तो है कणका लगुरे बढ़ ना था गस की बलना रहा सेरी किनारी मत गच खड़ंगी ना तू अपनी किनारी बढ़ दर है बीड़ा भी छोट लड़ाई के ना सो आज भी पिंदी ना तो सो खड़ंगी ना मन हो गया सो आज भी बुंदे रिंदे जीवन मा इंदे शहर मा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अक मिठास किया अक मुँह अरे मिठास पन किए ना शतो ये तय उम्र सोगी रहना चाहता और ये कम में इंदा बहरहाल। तो एक कार्यक्रम हूँ कर देना आरजे सचिन कपूर सोगी और फरमाइशरा दौर जरूर पूरा कर दे हिन शो आइया मेरे असराबणुआ की तारी फरमाइश थी। हाँ टेंशन सोनी जिंदगी है अब ना बोलेगो मुझे ना बड़ा प्यारा लगो तू कंडी था लेकिन वाकई में ना बोलेगो ना स्वीटी जीरी फरमाइश भी जरूर पूरी करनी है।

चलिए श्रोताओं, अबे ज़िंदगी सोनिया और वाकई में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर ज़िंदगी को जो खूबसूरत तरीके होगी अगर है जीन श्रोताओं, तो ज़िंदगी वाकई में बहुत नज़ारेदार है, खूबसूरत है। लेकिन ये है ना कि है ज़िंदगी जीना की आसो लेट शुरू कर दें, तीन तकरीन दी जवानी भी चली गंदी है, बुढ़ापा चलींदा। लेकिन एज इज जस्ट अ नंबर, सो इन्जॉय योर लाइफ।

चलिए श्रोताओं, अब आऊँ सचिन कपूर ले लेने तो सुत हो इजाजत और गंदे गंदे आके लास्ट गीत के गया धर्मा खेरे कचहरी ये भी हूँ लेंदे ने हंसते रहे मुस्कुरते रहे और आर जे सचिन कपूर जो चूर थो पांच छिया थो अठ यही हूँ दे रहे नमस्ते।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए, कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है।
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी एक मिनट, अरे बिरजू वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
4: मास्टर जी टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: से ना आजकल भर्ती हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रूपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रूपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। हा? मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ, देखो क्या हो गया।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए, कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है।
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि

0: खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
1: वैसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
2: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
1: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए। फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
2: ये होगा भी नहीं। हा? मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
1: हाँ, देखो क्या हो गया।

गुड इवनिंग धर्मशाला, कार्यक्रम शुरू हो गया है 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और रहूंगी आपके साथ मैं अभी 6 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक। श्रोताओं, उन सभी श्रोताओं को सबसे पहले मुबारकबाद जो मना रहे हैं किसी न किसी खास वजह से अपना आज का ये दिन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, और अगर सड़क पर भी जा रहे हैं, कहीं किसी भी माध्यम से हमें सुन रहे हैं, तो आप सभी के लिए हमारी दिल से दुआ कि आप आराम से सुरक्षित अपने अपने घरों पर पहुंच जाएं।

शुरू हो गई है हमारी आज की संध्याकालीन सभा। दोनों हाथ जोड़ करके आप सभी को हमारा प्यारा सा नमस्कार। तो आज हम पहुंच गए हैं 8 मई में और बाहर देख रहे हैं आप मौसम कैसा है। मौसम चलिए मौसम के बारे में हम करेंगे कार्यक्रम में आगे बात। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

तुम तक ये गाना सुना आपने जावद अली, कीर्ति संगाथिया और पूजा विद्यानाथ की आवाजों में। तो टेम्पो रखना चाहते थे हम ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वो गीत भी तो हमने आपको सुनवाना ही था। कार्यक्रम 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और अब बात कर लेते हैं हम आज के मौसम की। तो इस समय तापमान बना हुआ है धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में 24 डिग्री सेल्सियस। हवा में नमी है 57%। अगर सारे दिन भर की बात करूं मैं तो मुख्य रूप से तो बादल वाला ही मौसम रहा, हल्की हल्की बारिश की संभावना भी थी, अभी तक तो नहीं हुई है लेकिन अभी रात पड़ी है, देखते हैं क्या होता है। और साथ ही में जो हवा की गति है वो है लगभग 2 से 5 मील प्रति घंटा और नमी का स्तर 80% से ऊपर जा सकता है, जिससे वातावरण में ठंडक महसूस आपको होगी। और हाँ, हो भी रही है, इतनी ज्यादा गर्मी हमें लग नहीं रही। क्यों, क्या कहना है आपका? मौसम का खेल है ना, गर्मी सर्दी का, अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अपना बचाव रखिएगा। देखिए अभी तक हमने स्वेटर्स नहीं उतारे हैं, क्योंकि टू व्हीलर में आना जाना होता है तो इतना सा ध्यान तो खुद का रखना भी पड़ता है भाई, नहीं तो फिर हम आप लोगों से क्लियर बात कैसे कर पाएंगे? कहीं हमारा गला खराब रहेगा, कहीं हम सुस्त हो जाएंगे, अगर जरा सा भी हम नासाज हो जाते हैं तो फिर हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो कि आपसे बातचीत करने में कोई भी थोड़ा सा भी खलल हमें लगे।

मीका सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना एक्शन रीप्ले फिल्म का ये गीत, बड़ा ही प्यारा सा, धक धक धक दिल, हाँ धक धक जी दिल धक धक करता ही है श्रोताओं, और करता ही रहे ये ही अच्छी बात है, क्यों। 91.2 FM से मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया, आप सभी के साथ आपके अपने कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्रोताओं, अब लेते हैं आज का विचार इस सभा का। अगर एक दिन आप पर अपने आप पर आपको गर्व करना है तो आज हारी हुई बाजी को जीतना ही होगा। कई बार सामने से ना हमारे फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं और हमारा दिमाग ना एकदम डंप हो जाता है, हमें लगता है कि ओहो कितना अंधेरा हो गया हमारे आसपास में, चाहे रोशनी जली भी हो लेकिन हमारे पूरे अंदर अंधेरा हो जाता है क्योंकि कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं होती हैं। उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमने इतनी मेहनत कर ली, हमने अपना सारी 100% दे दिया लेकिन फिर भी ये जो चीज़ हमने सोची थी वो नहीं हुई। तो फिर क्या होगा, या तो हम हार के बैठ जाएंगे या फिर हम अपनी एक और कोशिश करेंगे। तो क्या करना है आपको, एक और कोशिश करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर दिमाग को शांत कर लें और ये सोचें कि कहाँ पर ऐसी कोई चीज़ रह गई, चूक रह गई, या जो आपने अभी तक किया उसी में से आपको रास्ता भी मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल शांत हो जाइए, शांत होकर बैठ जाइए और फिर सोचिए कि जब आपने अगला स्टेप लेना है तो किस तरह से लेना है, और खुद पर भरोसा रखो, कामयाबी मेहनत से मिलती है। सच्चे विजेता वो नहीं जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वो हैं जो कभी हार नहीं मानते। तो आज मेहनत करो, कल आपका अपना होगा। यानी जीवन सुख दुख हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बने। केवल अपने बारे में ना सोचते रहें कि हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया भाई, अब मैं क्या करूं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देकर तो देखें, वाह आपका दिन कैसे बनता है। लेकिन हाँ, विनम्र उतना ही बने जितना आवश्यक है, अपनी क्षमता को भी पहचानें, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला आपको बिल्कुल कमजोर ही समझ ले।

चोर बसारी फिल्म का गीत अभी आपने सुना 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आज है 8 मई, तो 8 मई को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस डे, और साथ में इसको रेड क्रिसेंट दिवस भी कहा जाता है। ये तिथि हेनरी ड्यूनेट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, और यही तिथि अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, विश्व डिंब ग्रंथि कैंसर दिवस और यूरोप विजय दिवस के साथ भी मेल खाती है, यानी वो दिवस भी इसी दिन मनाए जाते हैं।

आज हमारे धर्मशाला में भी आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही जो महत्वपूर्ण कुछ कार्य हुए, परियोजनाएं जो हैं शुरू की गई, उसके बारे में भी हम आपको कार्यक्रम में जरूर बताएंगे। फिलहाल तो एक खबर पर हमारा ध्यान गया है, नजर गई है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अधूरा कैंपस लेगा कड़ा इम्तिहान। क्या होगा इसके बारे में भी कार्यक्रम में आगे करेंगे बात। फिलहाल तो आपकी जिज्ञासा जगा रही है। और 340 मतदाता पंचायत चुनावों का करेंगे बहिष्कार। भाई ये क्या हो गया, चलिए करते हैं बात। और शहरों पर चढ़ा चुनावी रंग, गांव में भी बिछ गई बिसार। थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको जरूर बताएंगे हम। और एक और खबर, धर्मशाला में आईपीएल पहले ही मैच पर बारिश का साया, टेंशन कुछ बढ़ गई है। और अब इंद्रनाग जी के आशीर्वाद पर ही लगेंगे चौके छक्के। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया कांगड़ा में येलो अलर्ट, लगातार बर्फबारी, ओलावृष्टि और बारिश से खतरा बढ़ा। और हम आपको अभी तो यही तो कह रहे थे कि अभी जो मौसम है वो आप सोचें कि बदल गया है, नहीं नहीं, अभी खतरा टला नहीं है। हो जाइए थोड़ा सा सावधान। और ये जो आप आधी बाहों के टी शर्ट्स और सूट्स वगैरह पहन करके घूम रहे हैं ना, तो भाई अगर तो आपकी बॉडी अलाउ करती है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नज़ला जुकाम जल्दी ही पकड़ लेता है और इस मौसम में आप परेशान होते हैं इस तरह के बदलते हुए में, तो भाई ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर नहीं पहन सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक पतली सी स्वेटर अपने साथ रखिएगा ज़रूर।

जी श्रोताओं, तो ये था छोटा सा अंतराल। तो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला की स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक इस समय समय हुआ है 6:30।

डेली सिक्स फिल्म का गीत अभी आपने सुना 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम है गुड इवनिंग धर्मशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और जैसे कि हमने आपसे कहा था कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। हर साल समाज के हर वर्ग के लोग दुनिया के गुमनाम नायकों रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के स्वयंसेवकों को याद करने के लिए कुछ पल निकालते हैं। तो दोस्तों, ये लोग वर्दी भले ही ना पहनते हों, लेकिन आपदा आने पर तुरंत मदद के लिए पहुंच जाते हैं। जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहां उम्मीद की किरण लेकर के। चाहे बाढ़ से राहत पहुंचाना हो, चिकित्सा सहायता प्रदान करना हो, या संकट में फंसे किसी व्यक्ति को सांत्वना देना, उनके कार्य उनके शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। और ये दिन उनकी दयालुता पर प्रकाश डालता है और हमें याद दिलाता है कि सबसे कठिन समय में भी हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं।

श्रोताओं, खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत सुना अभी आपने हर्षदीप कौर और केके की आवाज़ों में 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आपको जानकारी देते हैं कि आज श्री सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब योल खास में धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ साहिब जी जो रखा हुआ था उसका भोग पड़ा है सुबह 10 बजे और कीर्तन दीवान में सुबह 11 बजे से हुजूर रागी भाई रविंदर सिंह जी जो कि हरमिंदर साहिब अमृतसर से आए थे उन्होंने गायन पाठ किया, शब्द गायन किया।

और इस पाठ का जो आरंभ था वो 6 मई से कर दिया गया था सुबह 10 बजे से, जिसका जो कि अखंड पाठ था और उसका भोग आज पड़ा है और सभी लोगों ने इसमें शिरकत की है।

हमारे एडीएम शिल्पी बेगटा सहित कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद थे। और इसी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं अगले गीत की ओर।

हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर। जवाब हम देंगे फिल्म का गीत अभी आपने सुना, शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की युगल स्वरों में। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। कर रहे थे हम रेड क्रॉस दिवस के बारे में, तो ये महज दिन, ये जो दिन है ये महज श्रद्धांजलि देने से बढ़कर के कहीं बढ़कर उन लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करने का दिन है जो दूसरों को प्राथमिकता देते हैं। ये उन लोगों को सम्मानित करने का दिन है जो संकट के समय पीछे रह करके जरूरतमंदों को भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। और ये काम सिर्फ जान बचाना ही नहीं, उनका काम जो होता है वो सिर्फ यही नहीं होता है, बल्कि गरिमा बहाल करना, दर्द उनका कम करना और ये दिखाना कि किसी को भी कठिनाइयों का अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा। उन व्यक्तियों के प्रयासों को पहचानना और भी लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि दुनिया भर में दयालुता की लहर दौड़ जाती है।

अब आप सोचेंगे कि हम रेड क्रॉस दिवस कैसे मना सकते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। रुकिए, थोड़ा देर इंतजार कीजिए। पहले सुन लेते हैं हाउसफुल 2 का फिल्म का ये गीत, शान श्रेया घोषाल की आवाजों में।

अचेतों हमारे आसपास हुई। हमारे आसपास जो कार्यक्रम आज हुए हैं उसके बारे में और भी बताते हैं आपको। आज म्युनिसिपल कमेटी धर्मशाला के समीप चरान पुल पर स्थित मदरलैंड अस्पताल का उद्घाटन किया गया। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन सुबह 10 बजे के करीब उपायुक्त हेमराज बैरवा के कर कमलों द्वारा किया गया। अस्पताल के एमडी धर्मेंद्र कंवर जी की जानकारी के अनुसार बाद में गवर्नमेंट अस्पताल के सीएमओ सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। श्रोताओं, बड़ी खुशखबरी ये है कि अब खुल गया है आपके अपने शहर में भी एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। ये हमेशा ही कहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कभी किसी को अस्पताल ना जाना पड़े। अस्पताल और जो कोर्ट होते हैं ना, वही एक दो चीज़ें होती हैं जहां पर हम कहते हैं कि काश कोई ना जाए, लेकिन फिर भी बीमारी जो होती है वो कभी ना कभी हमें घेर लेती है और साथ ही हमें उस तरफ भी जाना पड़ सकता है क्योंकि कई बार हम कानूनी पचड़ों में पड़ जाते हैं। तो अगर ऐसा हो तो आपके आसपास में ही आपको सहूलियत मिल जाए तो कितना अच्छा है ना। देखिए, कोर्ट तो आपके पास साथ में है ही, लेकिन यहाँ जब भी कभी कोई केस रेफर होता था तो बहुत दूर दूर लोगों को जाना पड़ता था। तो आपके नज़दीक ही अगर कोई ऐसी फैसिलिटी आपको मिल जाए तो क्या

श्रोताओं, हूँ आपको साथ ही बता दूं कि आप इस समय हमें सुन रहे हैं हमीरपुर से धतवाल की आवाज से भी। और साथ ही देश विदेश से तो आप हमें सुनते ही हैं हमारे रेडियो गुंजन ऐप के माध्यम से। तो बस अब कुछ ही पलों में बजने वाले हैं 7। श्रोताओं, अब ये वक्त हो जाता है आप सभी को पता है हिंदी समाचारों का।

0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वेत्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत सैनिक फिल्म से। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और श्रोताओं, कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम? प्रतिक्रिया के लिए ज़रूर हमारे लाइव नंबर पर फ़ोन कीजिएगा।

हमारी हसरत भी तो यही रहती है ना कि हम आपको आपके साथ मतलब हमेशा ही बातचीत करते ही रहें। हालांकि हमारी बारी जो है वो काफ़ी काफ़ी दिनों के बाद आती है, लेकिन हसरत तो होती ही है ना भाई। वैसे ही आप लोगों की भी कई सारी हसरतें होती होंगी, लेकिन उन्हें दिल में ही मत दबाइएगा। हसरतों के ऊपर काम कीजिए, काम करेंगे तो सफल होएंगे। तो अब बात करते हैं हम आज के दिन के बारे में। हमने आपको बता ही दिया है कि आज एक तो रेड क्रॉस डे है, लेकिन और भारत में क्या-क्या हुआ। तो रमेश चंद्र झा जी की जन्म जयंती है आज। एक भारतीय कवि थे, उपन्यासकार, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। मुख्य रूप से अपनी कविताओं में लोगों के जीवन संघर्ष, उनके सपनों और आशाओं को व्यक्त करते थे। उनका जन्म 8 मई 2028 को ब्रिटिश भारत के बिहार और उड़ीसा प्रांत के मोतिहारी में हुआ। और भी बातें करेंगे हम आपसे, लेकिन फिलहाल फिर से सुन लेते हैं एक और खूबसूरत सा गीत। पहचानिए किस फिल्म का गीत है।

श्रोताओं, आपने पहचान ही लिया है डंकी फिल्म का था ये गीत। 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से आपने सुना कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के अंतर्गत। अब एक प्रेरणादायक कहानी के सेक्शन की ओर चलते हैं। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि आज हमें कहानी की याद कैसे आ गई भाई। हाँ, कई बार ना हमारे पास बातें इतनी सारी होती हैं कि हमें कहानी सुनाने का आपको वक्त मिलता नहीं। और कहानी तो हमारी दादी नानी के ज़माने से चली आ रही हैं कहानियाँ, अब सुनना बंद हो गए हैं बच्चे। अब उन्हें पता ही नहीं है कि कई कहानियों का कभी समय भी था, कभी राजा रानी की कहानी, कभी भाई बहन की कहानी, कभी और बहुत सारी कहानी, तोता मैना की कहानियाँ। लेकिन आज सुना रहे हैं आपको हाथी और रस्सी की कहानी। तो कार्यक्रम की शुरुआत से ही हम आपको कह रहे हैं ना कि जीवन में कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए एक छोटी सी प्रेरणा की जरूरत होती है। तो ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे कुछ विशाल काय हाथी खड़े हैं। उन्होंने गौर किया, मतलब उस व्यक्ति ने गौर किया कि इतने बड़े हाथियों को न तो किसी पिंजरे में रखा गया है और न ही उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधा गया है। उनके सामने के पैर में बस एक पतली सी रस्सी बंधी हुई है। और हैरान रह गया वो ये देख करके कि ये हाथी तो जब चाहें उस मामूली सी रस्सी को आसानी से तोड़ करके वहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तो फिर उसने पूछा उस ट्रेनर से जो साथ में खड़ा था कि चुपचाप ये क्यों खड़े हैं, भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ट्रेनर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा होगा सोचिए, सोचिए जरा। अरे आप तो बहुत समझदार हैं, समझ ही गए होंगे कि जब ये हाथी छोटे थे तब हमने इन्हें इसी तरह की पतली रस्सी से हम बांधते थे। उस समय उसके लिए ये रस्सी बहुत मजबूत लगती थी, मतलब उस समय तो मजबूत ही थी, और वो लाख कोशिशों करने के बाद भी इसे तोड़ नहीं पाते थे। बार बार नाकाम होने के कारण उसके मन में, यानी हाथियों के मन में ये बात बैठ गई कि वो रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकते। परंतु आज वो हो गए हैं बड़े, और बहुत बड़े, इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि तोड़ सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में आज भी वही पुरानी सोच बसी है और वो इस बंधन से आज़ाद नहीं हो सकते, इसलिए वो कोशिश भी नहीं करते। तो हम आपको क्या कह रहे हैं कार्यक्रम के शुरू से ही कि जो भी आपकी हसरतें हैं उनको दिल में न दबाइए, बल्कि कोशिशें करते रहिए। कई बार होता है इंसान अपनी कोशिशें करना छोड़ देता है और जो हो रहा है उसको अपनी नियति मान करके चुपचाप समय निकालता चला जाता है, लेकिन बाद में कहीं किसी समय जा करके उसे ये एहसास होता है कि अगर इतने समय में भी हम कोशिश कर रहे होते तो भी बूंद बूंद करके घड़ा तो शायद भर ही जाता। तो ये कहानी हमें सीख देती है कि अतीत की किसी सफलता के कारण अगर हम हार मान लेते हैं और हम कभी कि अब हम कभी सफल नहीं हो सकते, तो हम खुद को अपनी ही बनाई हुई सीमाओं और नकारात्मक सोच की रस्सी में बांध लेते हैं। याद रखिए, दुनिया आपको तभी रोक सकती है जब आप खुद हार मान लें। अपनी सीमाओं को तोड़िए और आगे बढ़िए।

डार्लिंग डार्लिंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से किशोर कुमार की आवाज़ में, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। और श्रोताओं, अब बात करते हैं आपके पसंदीदा IPL मैचेस के बारे में। क्या कहा था हमने आपसे कि मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है कांगड़ा में येलो अलर्ट, साथ में लगातार बर्फबारी, ओलावृष्टि और बारिश से खतरा यहाँ बढ़ गया है। किस चीज का खतरा? ऐसा वैसा नहीं भाई, शायद मैचेस के ऊपर। 11 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले मैच में बारिश का साया छा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 11 और 12 मई को प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित जिला कांगड़ा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें से कुछ एक क्षेत्रों में बारिश, आंधी, तूफान और बिजली गरजने की संभावना जताई गई है, और ऐसे में देवभूमि के बारिश के देवता इंद्रनाग देवता के आशीर्वाद पर ही मैच हो पाएगा। इससे पहले भी इंद्रनाग जी के आशीर्वाद के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश के बावजूद धर्मशाला में मैचेस हो चुके हैं, जबकि इंद्रनाग जी की नाराजगी पर मात्र धर्मशाला स्टेडियम के पास ही बारिश के कारण दो इंटरनेशनल मैचेस पूरी तरह से रद्द भी हुए, ये भी आप जानते हैं। तो मौजूदा समय में लगातार हिमाचल प्रदेश ने मौसम में पूरी तरह से करवट बदली हुई है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, ओलावृष्टि, बारिश सहित तूफान और अंधड़ भी चल रहा है, और जिससे कि किसानों बागवानों को पूरी तरह से परेशान कर दिया गया है मौसम के द्वारा। क्योंकि हमने आपसे पिछले भी कुछ दिनों पहले कहा था कि मौसम बना हुआ है इस समय सेलिब्रिटी, और जब सेलिब्रिटी बन जाता है ना कोई, तो उसका दिमाग साथ में आसमान पर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कई लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, शांत हो जाते हैं। तो भाई, हमें जाकर के प्रार्थना तो करनी ही होगी। ग्यारह मई को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में मेजबान पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच IPL का T20 मैच होना तय है। कांगड़ा के धौलाधार में बर्फबारी, हिमपात और ओलावृष्टि भी लगातार हो रही है, और अब 11 मई से फिर से मौसम का अलर्ट दिया गया है, जो कि 12 और 13 तक जारी रहने का पूर्वानुमान है। तो इसीलिए क्रिकेट प्रेमी जो हैं मौसम को लेकर के चिंतित हैं।

श्रोताओं, कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत महत्वपूर्ण काम जब हमने करने होते हैं तो जाकर के जब हम वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, गुहार लगाते हैं इंद्रनाग देवता जी से, तो इतने सारे काले काले बादल भी पल भर में कहाँ उड़ करके चले जाते हैं, बिल्कुल नहीं पता चलता। और यही तो कमाल है और यही तो आस्था है। तो आइए मिलजुल करके हम भी प्रार्थना करें, चाहे यहीं से बैठे बैठे ही कर लें, ताकि हमारे ये जो मैचेस हैं यहाँ धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले अच्छे से संपन्न हो जाएं। और जिन भी लोगों ने टिकट पैसे देकर के टिकट ली हुई है, पैसे खर्चे हुए हैं, उनको कम से कम पूरा मैच देखने का सौभाग्य मिले, आनंद मिले। और अब वक्त हो गया है छोटे से अंतराल का।

श्रोताओं, फरेब फिल्म का गीत अभी आपने सुना 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो एक खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था हमने कार्यक्रम में अभी थोड़ी देर पहले कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अधूरा कैंपस लेगा कड़ा इम्तिहान। क्या है बात ये आपको बताते हैं। नगर निगम चुनाव के रण में उतरी राजनीतिक पार्टियों के बीच अब विकास के दावों से कहीं अधिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस का मुद्दा गरमा गया है। धर्मशाला में प्रस्तावित इस कैंपस को लेकर के मचे घमासान ने चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल दिया है और ये मुद्दा अब केवल एक शैक्षणिक परियोजना नहीं बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच प्रतिष्ठा की सीधी जंग में तब्दील हो गया है। 27 करोड़ की राशि के फेर में फंसी इस यूनिवर्सिटी ने शहर के सियासी तापमान को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया और परियोजना की सबसे बड़ी अड़चन वो 27 करोड़ की राशि है जो अभी तक जमा नहीं हो पाई है। इसके चलते धर्मशाला परिसर के निर्माण की प्रक्रिया ठप पड़ी है। जानकारी के अनुसार जब तक ये वित्तीय औपचारिकता पूरी नहीं होती तब तक जमीनी स्तर पर काम शुरू होना नामुमकिन है। और अब चुनावी मौसम में ये फंडिंग का अभाव ऐसा हथियार बन गया है जिससे कि मतदाता विशेषकर युवाओं के बीच जवाबदेही तय करने की मांग जोर पकड़ रही है। अब राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो शहर के कई वार्डों में इस बार वोट की चोट इसी मुद्दे पर आधारित हो सकती है। स्थानीय जनता के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है बल्कि उसके भविष्य का सपना भी है। का मानना है कि यदि वो कैंपस धरातल पर उतरता तो यहाँ के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ता और इससे क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए द्वार भी खुलते। और यही कारण है कि जनता की अपेक्षाएं सत्तासीन और विपक्षी दलों के प्रति नाराजगी में बदलती हुई अब दिख रही है।

आगे आने वाले दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है और ये जो चुनावी माहौल गरमाया हुआ है श्रोताओं, इस पर हम भी आपको थोड़ी थोड़ी राय तो क्या कहें, कुछ तो आपको बताते ही रहते हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और छोटी छोटी रील्स के माध्यम से भी बताते हैं अगर आपने कभी गौर किया हो तो।

0: मुंबई फिल्म का गीत अभी आपने सुना राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाजों में। और अब वक्त हो गया है प्रादेशिक समाचारों का।
1: राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के लिए राज्य सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली का किया शुभारम्भ। प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर ओपीएस व एनपीएस कर्मचारियों के बीच डीए को लेकर भेदभाव करने का लगाया आरोप। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में कल होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। और लाहौल स्पीति जिला में बर्फबारी से बंद दारचा श्रृंखला सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के उद्देश्य से आज राज्य सचिवालय शिमला में डिजिटल गेट पास प्रणाली और यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए प्रमुख इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पहल जनता व सरकार के बीच डिजिटल सेतु का कार्य करेगी, जिससे जनसंपर्क अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनेगा। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली विभिन्न सरकारी विभागों को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठक संबंधी आग्रह भेजने की सुविधा भी प्रदान करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक बैठक में नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन व हिमाचल सदन और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन के कार्य की समीक्षा करते हुए परियोजना को 15 जून से पहले पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में आगामी 17 मई को होने वाले चार नगर निगमों और शहरी निकायों में होने वाले मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के प्रमुख नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं। इस बीच प्रदेश की 3,754 पंचायतों के लिए तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन आज बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र भरे। किन्नौर जिला में आज विभिन्न पदों के लिए कुल 613 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जबकि लाहौल स्पीति में 67 नामांकन भरे गए। 11 मई को भी नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में वाणिज्यिक आपूर्ति लगभग 70% तक बहाल हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कहीं भी पेट्रोल या डीजल की कमी नहीं है।
2: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने ओपीएस को कर्मचारियों के हित में बताकर लागू किया, लेकिन आज पुरानी पेंशन स्कीम अपनाने वाले कर्मचारी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि आज स्थिति ये है कि एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार की दरों के अनुसार लगभग 60% डीए दिया जा रहा है, जबकि ओपीएस कर्मचारियों को राज्य सरकार की दरों के अनुसार केवल 45% डीए मिल रहा है। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि समान पद, समान कार्य और समान जिम्मेदारियों के बावजूद कर्मचारियों के बीच इस तरह का अंतर पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ओपीएस और एनपीएस कर्मचारियों के बीच डीए को लेकर बनाए गए इस भेदभाव को तुरंत समाप्त किया जाए और सभी कर्मचारियों को समान दर पर महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। सिकंदर कुमार ने कहा कि भाजपा हमेशा कर्मचारियों के हितों के साथ खड़ी रही है और भविष्य में भी कर्मचारियों की आवाज को मजबूती के साथ उठाती रहेगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश के प्राचीन मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं है बल्कि भारत की समृद्ध सभ्यता, सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक परंपराओं के महत्वपूर्ण प्रतीक भी हैं। उन्होंने आज कांगड़ा जिला के प्राचीन बैजनाथ मंदिर में दर्शन किए और देश व प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल ने हिमाचल की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण व संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल 9 मई को प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए अब तक करीब 63,000 मामले प्राप्त हुए हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने दारचा श्यंकला सड़क पर बर्फ हटाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लाहौल स्पीति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष व उपायुक्त किरण भड़ाना ने इस सड़क को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
3: सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने दारचा श्रृंखला सड़क पर बर्फ हटाने और मार्ग बहाली का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सड़क अब डबल लेन के रूप में तैयार है जिस पर भारी और हल्के दोनों प्रकार के वाहन चल सकेंगे। प्रशासन ने कहा है कि वाहनों की आवाजाही मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित की जाएगी। पर्यटकों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को यात्रा से पहले जिला प्रशासन द्वारा जारी मौसम और सड़क संबंधी एहतियात और नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। दारचा श्रृंखला सड़क मार्ग के खुलने से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों की आवाजाही को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज शिमला में शुरू हुआ। कोटशिरा कॉलेज शिमला और देश भगत यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने किया। उन्होंने सम्मेलन को आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, जो सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।
4: जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस है, हिंदुस्तान कैसे उसमें उभरता हुआ इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, वो सारे टच होंगे। यहाँ पर जो एक्सपर्ट आए हैं, तो मुझे विश्वास है कि ये जो दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, ये अपने आप में सक्षम होगी, इनोवेटिव होगी और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हुए एक्सपर्ट इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: सम्मेलन में विशेषज्ञ वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, पर्यावरण व तकनीकी सहित सभी क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे ताकि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और दैनिक खर्च चलाने के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है, जो इस सरकार की विफल आर्थिक नीतियों का सबसे बड़ा प्रमाण है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास ना तो आर्थिक दृष्टि है और ना ही वित्तीय प्रबंधन की कोई स्पष्ट नीति। उन्होंने कहा कि सुखू सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय केवल महंगाई बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता के हितों की आवाज उठाती रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के लिए राज्य सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली का किया शुभारंभ। प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर ओपीएस व एनपीएस कर्मचारियों के बीच डीए को लेकर भेदभाव करने का लगाया आरोप। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में कल होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। और लाहौल स्पीति जिला में बर्फबारी से बंद दारचा शिंकुला सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: श्रोताओं,
5: ये आकाशवाणी का
0: अभी आपने सुने प्रादेशिक समाचार और कार्यक्रम में अब गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में अब रह गया है हमारे पास थोड़ा सा ही वक्त, तो मैं आपको छोड़े जा रही हूँ इस प्यारे से गीत के साथ। ज्योति बिठाने को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति इसी गीत के साथ। जब भी मेट फिल्म का ये गीत है, एंजॉय कीजिए और लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ, वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए, कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है।
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: ऐसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ, देखो क्या हो गया।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है।
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवा तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे की मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रूपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रूपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ देखिए क्या हो गया।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओ मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

ओमेगा हर्ट्स पर है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: नजरों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे। ये एक और स्टाइल है,
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवा तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: ऐसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बीबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रूपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रूपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ देखिए क्या हो गया।

सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको तहे दिल से

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।